0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: When we hear good news, we should say, Alhamdulillah.

आखिरकार हमने उसे और उसके घर को जमीन में धसा दिया, फिर कोई उसके हामियों का ग्रोह न था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद को आता, और न वो खुद अपनी मदद आप कर सका।

क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाएगा

लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मेहनतें रायगां चली जाती हैं। जितनी जद्दोजहद काविश स्ट्रगल वो कोशिश करते हैं कि हमें दिल का इत्मीनान मिले, लेकिन मकसद ज़िंदगी से बेखबर होकर उनकी सारी मेहनतें अबस फजूल और बेसमर साबित होती हैं। वो बहुत कुछ करने के बावजूद भी गौरे मतलूब को पाने में नाकाम हो जाते हैं। वो किसी ने कहा था, जर्द पत्तों के सिवा कुछ भी नहीं हाथ आया, जर्द पत्तों के सिवा कुछ भी नहीं हाथ आया, मैंने आंगन में बहुत पेड़ उगा कर देखे। वो हकायक जिंदगी और मुसल्लमात हयात हैं क्या जिन्हें जानने और तस्लीम करने से जिंदगी जो है वो इत्मीनान कल्ब से माला माल हो जाती है और बसूरत दीगर वसायल हयात की रेल पेलो मादी कामयाबियां भी मिलें, इनका एक तवील सिलसिला भी हो, लेकिन इसके बावजूद को इंसान इत्मीनान कल्ब और सुकून दिल नहीं पा सकता। इन्हीं जिंदगी के हकायक को पहचानने के लिए कुछ कुलीदी पहलू हैं जिन पर आज हमारी गुफ्तगू होगी। नंबर एक, जब हम जिंदा होते हैं जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो फिर कुछ मसाइल हयात भी होते हैं। जिंदगी एक बहुत बड़ी हकीकत है और जिंदगी बादशाह की हो या गदा की, आका की हो या गुलाम की, किसी बच्चे की हो या बूढ़े की, गुनाहगार की हो या किसी साले मुत्तकी की, जिंदगी की किसी भी हैसियत और रूप में इंसान हो मसाइल से खाली नहीं होती। कोई ना कोई जिंदगी के अंदर मसला, कोई खदशा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं। मसाइल की नौइयत बदल जाती है लेकिन मसाइल जिंदगी के अंदर रहते हैं। किसी के पास पैसा होता है, दौलत होती है, लेकिन बच्चे तालीम हासिल नहीं करते हैं। किसी के बच्चे पढ़ने को तो बेताब हैं लेकिन उनके पास बच्चों को तालीम दिलाने के लिए जिस मुल्क में भी वो रहते हैं वहां पर वसाइल नहीं है। कोई वो हैं कि वो औलाद की नेमत से महरूम है और कोई वो हैं कि जिनकी नाफरमान औलादों ने उनका जीना दोबर किया हुआ है। कोई बंदा मुलाकात होती है, मेल जोल होता है, वो परेशान है कि फलां के प्लाट पर कब्जा क्यों नहीं कर सका, और किसी को ये परेशानी खाई जा रही है कि मैं अल्लाह ताला के बंदों को उसकी तरफ मायल क्यों नहीं कर सका। यानी कोई बुराई सोच रहा है, कोई अच्छाई सोच रहा है, अपनी अपनी सतह की उनको कोफ्त है कि मैं ये कर सकूं, कोई कहता है मैं ये कर सकूं, कोई ये सोचता है कि मैं लोगों को लिल्लाहियत इखलास और याद इलाही की तरफ क्यों नहीं ला सका, कोई सोचता है कि मैं लोगों को फला बुराई की तरफ और गुमराही की तरफ क्यों नहीं ले जा सका। ये एक अलग बात है कि जो सालिहीन होते हैं उनकी परेशानियां उनकी अजमत की दलील होती हैं और सरकशों की परेशानियां उनकी कम जरफी और घटियापन इसका मजर होती हैं। अलबत्ता अंदर अंदर से कोई ना कोई परेशानी सबकी होती है। यह नहीं हो सकता कि हम जिंदा हों और जिंदगी मसाइल से खाली हो, परेशानियों से खाली हो। एक घर के अंदर शानाइयां बज रही होती हैं,

0: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560 to donate £10 or visit matwproject.org.uk.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
2: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
3: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.

0: بول کہ جہاں اب تک تیری ہے لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشت سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں اس شو میں. اس کا نام ہے بول کہ لب آزاد ہیں تیرے, ہم ہیں آزاد, آپ ہیں آزاد, لب ہیں آزاد. اور آج ریڈیو کا شو ہونے والا ہے جی, بڑے دنوں کے بعد. جب کبھی کبھی دل سے ایک آہ اٹھتی ہے نا, دل سے ایک ہوک سے بھی اٹھتی ہے کبھی کبھی, اسی طرح دل چاہتا ہے کچھ کرنے کا. تو آج کا یہ شو آپ لوگوں کے نام کرتے ہیں جی, ریڈیو آزاد کے لسنرز کے نام کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. آج موڈ اچھا ہے, اندر کا موسم اچھا ہے, ماحول اچھا ہے, تو کوشش کریں گے آج آپ کو ایک فن لسنرز آزاد شو, جس میں تمام انگریڈینٹس, تمام مسالے, 12 مسالوں کی چاٹ نہیں ہوتی تھی ایک, اور وہ نہاری میں جب سارے مسالے پورے ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کھانا کھا کے اس میں کچھ کمی ہے آج, تو وہ والا دن نہیں رہے گا آج. آج ہم لوگ آپ کو خوبصورت کانٹریبیوشن بھی لیں گے. آج ایکچولی میرا پلان یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے شو بڑے دنوں کے بعد بیٹھ کے میں کچھ لکھوں آپ لوگوں کے لیے اور وہ پیش کیا جائے. بہت لوگوں کی فرمائش تھی کہ جو 10 ڈیز آف سائلنس اینڈ سالیٹیوڈ ہم نے منائے رمضان کے آخری عشرے میں, اس کے بارے میں کچھ میں نے کہا تھا. اس میں بہت ساری ایک تو پرانا رن آف دا مل کائنڈ آف کانسیپٹ ہوتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں, اور سارے کام شام چھوڑ کے اب نئے زمانے میں فون اور باقی چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اعتکاف ہو گیا تھا, لیکن یہ اس میں ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, مینٹلی, فزیکلی, اسپرچولی, اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن اس کے کچھ کام تو میں نے ان دنوں میں کیے, کچھ میں ان دنوں کے گزرنے کے بعد کر رہا ہوں, کچھ کے ریزلٹس آ رہے ہیں, کچھ میں ہم بری طرح مزریبلی فیل ہو رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے اس کو 3-4 دن کا اور دیا ہے تاکہ میں اور اس کی پریکٹس کر کے چیزوں کو پکا کر سکوں, اور انشاءاللہ پھر جب وہ نکلے گا دل و جان سے تو پھر آپ کے دل اور جان دونوں تک پہنچے گا, پھر آپ کہہ سکیں گے کسی کا بھائی کسی کی جان. ورنہ اگر نہیں اس طرح بیٹھا جہاں بیٹھنا چاہیے تو پھر آپ نے ایسے میری طرف دیکھ کے کہنے او کس کا بھائی کس کی جان, تو یہ ہم نہیں چاہتے جب ہم ایک کام کرنے آئے ہیں نا. سلمان خان صاحب کو پچھلی فلم میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا تو انہوں نے سیریس نہیں لیا, تو اب سکندر میں نا ان کا مقدر جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے جی. ٹھیک ہے, ایمپوران اور باقی جتنی بھی ایمپوران ہیں اور باقی جتنی فلمیں وہ بہت اچھی جا رہی ہیں, وہ ایک ہی طرح کا کام کرتے کرتے چیزیں تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی والی جو سچویشن ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہ آئے صبح شام جو ہم سبق پڑھاتے رہتے ہیں وہی ہم خود نہ پکا کر سکیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ شو شروع کرتے ہیں جی. آپ کے لیے 9725019390 از دا نمبر فار دا اسٹوڈیو, کیونکہ چینج, خان جی کیا کہتے تھے, نتھنگ از پرماننٹ بٹ دا چینج. پتر بالکل اسی طرح میرے کانوں میں آج بھی ان کی وہ آواز گونجتی ہے جب ہسپتال میں تھے, وہ تھوڑا سا آپریشن ہوا ہوا تھا ان کا اور ڈھیلے ہوئے ہوئے تھے تھوڑے سے, اور ان کو لگتا تھا کہ وہ جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے ان کے, تو تھوڑا سا امنگ بھی تھی, تھوڑا سا ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ کیا غلط ہوا کیا صحیح ہوا, کہاں چیزیں بہتر کی جا سکتی تھی, کہاں کیلکولیٹڈ رسک لیا جا سکتا تھا. اور اس کے بیچ میں ان کے وہ دو انگلش کے جملے مجھے آج تک یاد ہیں, ایک نتھنگ از پرماننٹ بٹ دا چینج پتر, اور دوسرا تھا چینج از دا اسپائس آف لائف. میں نے کہا واہ ہاں جی بڑی کمال باتیں, اور یہ ان دنوں میں پہلی دفعہ باپ بیٹے کے بیچ میں یہ باتیں ہوئی تھیں, ورنہ اس سے پہلے پٹھانوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہوتیں, بلکہ سلام دعا بھی ایسی کی جاتی ہے جیسے احسان کیا جا رہا ہو یا کہیں ہم آپے سے باہر نہ ہو جائیں اور ان کی سن کے ان کے سسٹم کے مطابق چلیں, وچ آئی آلریڈی آلویز ڈیڈ. لیکن پھر چیزیں ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ, تو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے, لیکن اسی طرح پھر آہستہ آہستہ چیزیں, رنگ میں بھنگ پڑنے سے بہتر ہے کہ رنگ کو الگ کر دیا جائے, بھنگ کو الگ کر دیا جائے. جب بھنگ کی ضرورت ہو تب استعمال کی جائے, جب رنگ کی ضرورت ہو تب استعمال کیا جائے, دونوں کو مکس نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, ورنہ ساوی سی بن جاتی ہے, اور ساوی جس کو چڑھ جاتی ہے پھر وہ ہر اس کو ہر چیز ساوی ساوی نظر آتی ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ کیا تھا, صاحب ان کا جو پگلا ہے نا اس کو بھی سب کچھ ہرا ہرا نظر آتا ہے. 9725019390 آج کا یہ خوبصورت شو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اٹس اے فن ریڈیو آزاد کا لسنر شو ہے جناب. آزاد لس کو ہم کہتے ہیں اے فن لسنرز آزاد شو, اس میں فن بھی ہونا چاہیے, ون آف بھی ہے آگے تو اوکے, ون آف اے کائنڈ ہونا چاہیے, فن ہونا چاہیے, لسنرز اپنا کانٹریبیوٹ کریں, آزاد صاحب اپنا کانٹریبیوٹ کریں. آزادی یہاں پر دونوں کے لیے, میرے لیے بھی, آپ لوگوں کے لیے بھی ہے, खुल के हम बात कर सकें। इससे पहले कि हम आगे जाएं और चेंज की तरफ आएं, हम आपको ये बताते चलें, वो लोग जो इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, डिफरेंट कंट्री से हमें कॉल करते हैं जी, उन लोगों के लिए हम बताएं रेडियो आज़ाद का व्हाट्सएप नंबर, जो स्टूडियो का नंबर आप लोगों के लिए आसानी के लिए रखा है, वो चेंज हो चुका है जनाब। ये मतलब इसका ये नहीं था कि नंबर मनहूस था और कम कॉल आती थी, ऐसा नहीं है, कुछ भी कुछ भी मनहूस नहीं होता, लेकिन उसके साथ कुछ इश्यूज थे तो उसको चेंज करके आप लोगों के लिए नया नंबर रखा है, आसानी से याद हो जाएगा आपको और आप इसको सेव कर लेंगे। आपको ब्रॉडकास्ट में भी मिल जाएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर है 4698304083, चेकआउट भी कर सकते हैं। देखते हैं जी पहला कॉलर इस नंबर पे कॉल करने वाला कौन होगा जिसको हम याद रखेंगे और फिर गाहे गाहे उनको याद किया करेंगे। हमें जब चीज़ें याद रखनी हो ना तो 4 साल के बाद हर चीज़ याद रखी जाती है। इंसान की बड़ी ज़बरदस्त खुद रब ने मेमोरी रखी है, उस मेमोरी की जॉगिंग हम नहीं करते, उसकी एक्सरसाइज नहीं करते, इसीलिए फिर हमारी मेमोरी दुखी हा वाली सारी कहानियाँ रह जाती हैं और जो काम की चीज़ है वो नहीं पहुँच पाती। ठीक, सो इस थॉट के साथ आज का ये शो शुरू करते हैं जी। नंबर है स्टूडियो का 9725019390। और आज के शो में हम उम्मीद करेंगे कि अगले शोज़ का जो रन डाउन मैंने आपको बताया, नेक्स्ट जो शो होने वाला है वो है द 10 डेज ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, 10 दिन की खामोशी और अपने साथ जो हमने लोनलीनेस बिल्कुल नहीं थी, सॉलिट्यूड में हमने क्या खोया क्या पाया, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चन सर आंखों पर, बहुत सारे लोगों ने कॉल भी मुझे की पर्सनली और उन्होंने कहा सर उसके बारे में आप बताइएगा ज़रूर, और कुछ ने कहा जी अभी तक आपने नहीं बताया, तो हमने कहा चलिए पूरा 1-2 घंटे का शो जैसे हम पहले किया करते थे, किसी भी चीज़ का टॉपिक बना लेते थे और फिर उस चीज़ का उसके बारे में हम सैर हासिल गुफ्तगु किया करते थे। ठीक है, जैसे सैर भी कराएंगे और साथ कुछ ना कुछ हमें हासिल भी होगा, मुस्तफीज करेंगे जी, इस्तफादा हासिल करेंगे चीज़ों से, बल्कि इस्तफादा हासिल करना ठीक नहीं, इस्तफादा करेंगे उसका यही मतलब है फ़ायदा हासिल करना। तो यही वो गलतियां जो हम अक्सर करते हैं, तो और गलतियों से याद आया क्योंकि अभी आपकी कॉल्स नहीं, जब मैं लंबी कोई बात कर रहा हूं तो आपकी कॉल्स मेरे पास स्टूडियो में नहीं होती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आप लोग दम बखुद होकर कभी कभी खुद बखुद सुन रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता कहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपके लिए कोई एक खूबसूरत सा ट्रैक से हम शुरुआत करते हैं जी आपके, पहले तो आपको जगाया हमने जागो वाले लाल वाले बैंड से, जिनके हजरत जो थे वो यहाँ तशरीफ़ भी लाए थे, प्रोफेसर साहब ने क्या कमाल उनकी गायकी है, क्या गला है और क्या कमाल सिंगर हैं, उनको दोबारा भी इंशाल्लाह आपके हुजूर पेश किया जाएगा ताकि हुजूर समझते हैं आप, तो उसके आपको हाजिर करके, हाजिर से है हुजूर, तो उससे आपके पेश किया जाएगा और आप लोग भी साथ साथ इंजॉय करेंगे। आज का ये खूबसूरत शो नाम है जी लिसनर्स ऑफ रेडियो आज़ाद के, जिनके साथ मिलके हमने फ़न किया, 14 साल गुजारे और रेडियो आज़ाद ने 14 साल गुजारे, बोल के लब आज़ाद ने तेरे ने उससे ज़्यादा टाइम लिया और आप लोगों के साथ रहा। तो आज के पहले लकी कॉलर ऑफ द डे ये फ़ोन लाइन के ऊपर है, इनसे बात करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई मेहरबान है हमारे साथ रेडियो आज़ाद यू ऑन द एयर।
1: अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी।
0: जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं?
1: I'm fine, alhamdulillah. I'm the one who's driving and calling.
0: सब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अपना तारुफ हवा बहार की है।
1: Okay, no, I'm not driving right now.
0: ठीक है।
1: So, is any topic today?
0: कोई आज तो fun listener show है, आपके जिम्मे इसको, आपके जिम्मे ये है कि आप करेंगी बात और हमारे जिम्मे ये है, यानी हम, I am responsible for creating fun out of whatever you're gonna say or add or contribute. जी
1: ओके, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल एंड यू हैव सेड दिस नंबर ऑफ टाइम्स एंड आई हैव हर्ड इट दैट आई वांट टू नो इन मोर डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ टफ लव एंड हाउ टू अप्लाई इट बिकॉज आई सी लॉट ऑफ फैमिलीज अराउंड मी दे हैव किड्स एंड समटाइम्स दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट एंड So, how to apply it basically, like what they should do it. And you can give some examples and explain it more.
0: ठीक, सवाल ये है कि tough love का concept क्या है और इसको अपनी life में apply कैसे किया जा सकता है ताकि इसके results भी आएं और चीज़ों को और रिश्तों को बेहतर हैंडल किया जा सके, ये सवाल है।
1: स्पेशली इन रिलेशन टू किड्स।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: Like parents towards kids.
0: बिल्कुल ठीक। Nice of you. Thank you very much for keeping your word. जब मैंने आपसे कहा था कि आप आइए जब भी वक्त हो contribute करें और उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है?
1: Yes, and I'm changing my name to, and I can refer, you can recognize myself as an Azad Show fan. Honestly.
0: Nice of you. ठीक है। तो आजाद शो फैन आपका नाम रख देंगे, ठीक है?
1: Yes.
0: And इसका मतलब है कि it makes, इसके बारे में अंग्रेज पता है क्या कहता है? Because you know आपकी लैंग्वेज ज्यादातर इंग्लिश है। ये जो भी आपने कहा है ना कि आप अपना नाम चेंज करके आजाद शो फैन कर देंगी, तो इसका अगला आंसर ये होना चाहिए मेरी तरफ से, इट मेक्स टू ऑफ अस। ठीक है। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर अ ग्रेट स्टार्ट। आज का ये चेंज, एक तो नाम रखा गया जी, एक व्हाट्सएप का नंबर चेंज हुआ। देखते हैं आज और क्या क्या चेंज हो रहा है। रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर।
2: नमस्ते आजाद जी, कैसे हैं आप?
0: जी, आपने अपना नमस्ते नहीं चेंज करना है, ये बहुत खूबसूरत है।
2: I can do it, but
0: नहीं, 5,000 साल से चल रहा है तो क्यों चेंज करना है?
2: जी, मैं ये कह रही थी कि रिश्ता अगर किसी से बनाना है तो उसमें झुकना नहीं चाहिए।
0: अच्छा,
2: गलत रिश्तों में झुकना कुछ गलत
0: नहीं नहीं बिल्कुल मतलब सही
2: नहीं अच्छा है, और कभी कभी झुक भी जाओ तो वो भी बुरा नहीं है, पर हमेशा अपना रिश्ता बनाए रहना चाहिए। जिंदगी की जो परीक्षा है उसमें कोई अंक नहीं होते हैं, मिलते हैं, लेकिन आप उसको हृदय से लगाते रहिए, जोड़ते रहिए, समझते रहिए, याद करते रहिए, तो उसी में आप पास हो जाते हैं।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत बात है। ये याद रखिएगा एक चीज, उन्होंने बहुत अच्छा अभी एक आइडिया दिया मुझे इस बात से कि रिश्ते में कभी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रिश्ते में कभी झुकना नहीं चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कि कभी कभी अगर झुक भी जाए तो उसमें कोई कबात नहीं है। देखिए, जब तक ये झुकने झुकाने का काम चलता रहेगा ना, ये कि टांग किसने अपनी ऊपर रखनी है, हु इज़ वेयरिंग द पैंट्स, आपकी मर्जी पे चलेगा या इनकी मर्जी पे चलेगा, जब तक हम इन चक्करों में रहेंगे ना, ये हमें गोल चक्कर ही है रिश्तों का जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये विशेष साइकिल है। हमें अपनी सोचों में समझना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा रिश्ता, रिश्ता का मतलब है धागा, ठीक है जी, वो जो टूट नहीं रहा है, वो जो रिश्तों का धागा है वो दो बंदों से, उसका एक साइड है दूसरी साइड है और उसके बीच में जो भी चीज़ है इसको पकड़ के रखने को रिश्ता कहना चाहिए। कोई भी झुकना झुकाना जब हम आएगा ना, जब आप एडजस्टमेंट्स करके किसी काम में कोई बंदा बेहतर है, मैं आपको बता देता हूँ मैंने अपने रिश्ते 20-30 साल से कैसे मेंटेन किए हुए हैं, कैसे उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लोग कहते हैं जी रिश्तों में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो उन लोगों में होते हैं जिन्हें कोई कॉन्शियशियस नहीं होते, जो कॉन्शियस नहीं होते, जिनके अंदर कोई फोर साइटेडनेस नहीं होती, जो एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को नहीं जानते, जो एक दूसरे की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को नहीं समझ पाते, उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो जब रोल डिफाइन हो जाते हैं, जब दो बंदे ये फैसला कर लें कि उन्होंने रिश्ता रखना है, चाहे ये घर में माँ बाप हैं, चाहे ये खून के रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते हैं, काम के रिश्ते हैं, जब ये पता चल जाए कि रिश्ता रखना है, तो पहले ये फिगर आउट कर लेना जहन में बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब है दो बंदे जो एक होने वाले हैं, इसका मतलब है दो अलग डायरेक्शंस नहीं हो सकती, डायरेक्शन एक होगी। दो बंदे पहले मिलकर फैसला कर लें, क्योंकि वो कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग है, वो जागे हुए हैं, माइंडफुल हैं कि क्या चाहिए और क्यों आ रहे हैं, और जब भी इनको को लगे कि कोई गड़बड़ हो रही है, रास्ते अलग हो रहे हैं, कोई मसले पैदा हो रहे हैं, तो दे ऑलवेज रिवर्ट बैक टू बेसिक्स। ये जिस इंस्टीट्यूशन से मैं तालीम हासिल करके आया हूँ, उनमें सबसे जो अच्छी चार बातें मैंने सीखी हैं, किसी दिन बाकी भी बातें बताएंगे, उसमें से एक था, जब भी आप गुम जाएं, डायरेक्शन लेस हो जाएं, चीज़ें सुकून ना आए, खुशी ना आए, रिजल्ट ना आ रहे हो, ऑलवेज गेट बैक टू बेसिक्स। सारा कुछ आसान हो जाएगा कि किस लिए ये रिश्ता बनाया था, कहाँ जाना था, बात क्या हुई थी, क्या लिखा गया था, क्या बोला गया था, क्या समझा गया था, वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं है जो पहले थी। अगर बंदे वही हैं तो रास्ते में मोनोटनी हो जाती है, रास्ते में लोग अपने अपने काम में गुम हो जाते हैं और रिश्ता भूल जाते हैं। तो इसको आपने याद रखना है कि मकसद क्या था, तो अगर ये झुक जाए, वो झुक जाए, इसको झुकाना है, उसको उठाना है, इस चक्कर में पड़े रहेंगे, तो ये हमेशा इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव या एक के आगे दूसरा बंदा, जब हम ये करते रहेंगे ना, हमें कभी समझ नहीं आएगी। दो बंदे मिलकर इंडिविजुअल कॉन्शंस, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है एक इंसान की और दूसरे की मिलकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनेगी। आप अगर न्यूरो साइंस को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी खुदा ने इंसान के अंदर ब्रेन वेव्स रखी हैं। ये एक है कलेक्टिव ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट। वो आपको दो बंदे, एक बंदा जब किसी एनवायरनमेंट में जाता है ना, तो उसका जो दिमाग है वो पहले ही फ्रीक्वेंसी जो है ना, उधर की जो पावरफुल फ्रीक्वेंसी है उसको ट्यून इन कर लेता है, और वो देखता है कि वो मेरे साथ चल रहा है या नहीं। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी बंदे की कंपनी में बैठते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, आप आउट ऑफ प्लेस महसूस करते हैं। तो आपका ब्रेन जो है ना, बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, बहुत रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट है, वो आपसे बहुत आगे जा रहा है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे और उसको बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके साथ बस ऑटो पायलट पे चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आपको उसको कंट्रोल करना और उसको समझना और उसके मुताबिक ऑपरेट करना सिखाती हैं। तो जब आप ये करना सीख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि रिश्ता होश में रहकर बनाया जाता है। टकराने से किसी आदमी से टकरा जाने से गले नहीं मिलते आप, उससे आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो हम रिश्तों में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। हमारे रिश्ते जो है ना, ये उसके लिए क्या वर्ड मैंने बनाया था, मैड म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का नाम हमने रिश्ता रखा हुआ है। हम टकरा जाते हैं एक दूसरे से, उससे कभी कुछ अच्छी चीज़ निकल आती है, कभी कोई बुरी चीज़ निकल आती है। हमारा कोई कंट्रोल, कोई, क्योंकि कॉन्शियसनेस उसके अंदर इस्तेमाल ही नहीं की गई, दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, प्लान इस्तेमाल नहीं किया गया, उसमें दो बंदों के आपस में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं यूज़ की गई, कुछ नहीं हुआ, तो फिर जारी बात है यही रिजल्ट्स आएंगे। तो जब तक हम ये चीज़ें नहीं देखते, झुकना झुकाना, इसका आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि कैसे रिश्तों को लंबा चलाया जा सकता है। मैं कैसे 25-30 साल से वो 8-10 रिश्ते चला रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। एक दूसरे को ये देखना चाहिए उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उनका स्किल सेट कौन सा है जिसमें वो आपसे बेहतर है। हर आदमी जिस मैं रिश्ते में हूँ उसमें से वो इंसान मेरे से उस काम में बेहतर है। वो काम का कंट्रोल उसको देना है, उसको लीड करना है, आपको फॉलो करना है। उसको भी इतना स्मार्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ में लीड कर सकते हैं और आपके किस में रिजल्ट हैं, वो वाला पोर्टफोलियो आप ले लें। दोनों बंदों को अपना अपना क्या हो गया, रोल डिफाइंड हो गया। ये रोल डिफाइंड जब हो जाते हैं, चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, चाहे घर में, चाहे कंपनी में, चाहे किसी भी सिस्टम के अंदर इसको आप डालेंगे। उसके बाद फिर आता है कलेक्टिव काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना उन चीज़ों में जिसमें वो कमज़ोर हैं। वो आपसे सीखेंगे, इस काबिल समझेंगे। बाहर से जाकर वो सीखने की कोशिश करते हैं, अपने से नहीं सीखते। उस चक्की की कोई इज्जत नहीं करते जिसका पीसा हम खाते हैं, और बाहर से हम जो है ना हर बंदे से विजडम लेके आ जाते हैं और वो चीज़ें हमसे होती नहीं हैं। ये बड़ी खूबसूरत इसमें पंजाबी की एक शेर था, किसी और दिन आपको सुनाऊंगा मैं। तो ये आपने समझना है कि, और आपने रिश्ता बनाया है, इसमें रहना है और लॉन्ग टर्म सोचना है। शॉर्ट टर्म सोचेंगे, रोज़ एक नया बंदा आपके सामने खड़ा होगा, रोज़ एक नई चीज़ आप बनाएंगे। तो लॉन्ग टर्म चीज़ बुनियाद मजबूत करनी है, उसके ऊपर काम करना है, अपने पे भी काम करना होता है। कॉन्शियस जो आदमी होता है ना, जो माइंडफुल होता है, जो जागा हुआ इंसान होता है, कॉन्शियस बीइंग जो होता है, वो रिश्ते में अपने पे भी काम करता है, दूसरे पे भी काम करता है और रिश्ते पे भी काम करता है, प्रोवाइडेड दूसरा इंसान उसके साथ चलने की कोशिश करे जिस काम में वो अच्छा है, और उस काम को करे जिसमें वो खुद बेहतर है, और उसको लेकर आए और उसमें फ़ायदा दिखाए किसी दूसरे इंसान को, और कभी कंपेटिटिव ना हो, और कभी दिमाग पे काम करना है। कल मैं किसी को कोई बात समझा रहा था कि देखें, अक्सर वो कहते हैं सर आप जज्बात के बड़े ख़िलाफ़ हैं, तो मैंने कहता हूँ मैं बिल्कुल जज्बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जज्बात ही रोबोट को इंसान बनाते हैं, जज्बात ही इंसान को मोमिन बनाते हैं, ईमान वाला बनाते हैं। जज्बात जिसका ताल्लुक हमारे दिल और दिमाग दोनों से, वही इंसान से कनेक्ट करके, वही रूह के अंदर का जो स्पार्क है उसको सप्लीमेंट करते हैं, ऑगमेंट करते हैं, उसी से रिजल्ट हासिल किए जाते हैं। लेकिन जज्बात बिरयानी में नमक की तरह है, खूबसूरत कर देंगे, अच्छे से अच्छी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, परफेक्ट वो लग रही है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, एरोमेटिक है, सब कुछ है, लेकिन खा नहीं पाएंगे आपके, नमक नहीं है उसके अंदर। और कई लोग जब इस नमक को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो इसमें दोबारा इसको कम नहीं किया जा सकता, वो खाने के काबिल नहीं रहती। तो अगर कम होगा तो थोड़ा सा डाल देंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो जज्बात के बगैर ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। उस बादशाह के बेटे ने बिल्कुल यही कहा था कि मैं आपसे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी मैं नमक से करता हूँ। बादशाह को बात बहुत बुरी लगी, बाकी कह रहे थे जैसे मैं हीरो जवाहरात से करता हूँ, पावर से करता हूँ, रब से करता हूँ, हर एक चीज़ से मिलाया गया लेकिन नमक से नहीं। तो बिल्कुल बाद में पता चला कि वो नमक बड़ा इम्पॉर्टेंट था। तो इसी तरह चीज़ों को समझना और छोटे छोटे स्टेप्स लेके उनकी तरफ बढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। तो जज्बात, मोहब्बत, इमोशन, इमोशन कहते हैं जज्बात को। जज्बात वर्ड कहाँ से बना है? जज्बा, जज्बा है तो आपके अंदर यू फील अलाइव, तो उसी से जज्बात बने। तो इमोशन क्या है? मोहब्बत। इमोशन क्या है? किसी की इज्जत करना, किसी का मुकाम किसी को जहन में देना। ये फीलिंग्स जो हैं हमारी वो एहसासात हैं, वो जज्बात नहीं हैं। इसीलिए डिफरेंट वर्ड्स बनाए गए हैं लोगों को इन चीज़ों को एक्सप्रेस करके समझ सकें। एक थॉट आपके जहन में पैदा होती है। अब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, ये आपका उसके लिए जज्बा है, इमोशंस है। लेकिन उसके बाद जिस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ वो ये है कि जब आपसे बंदे से मोहब्बत हो गई, बंदी से हो गई, रिश्ता बन गया, काम से मोहब्बत होगी, पैशन से मोहब्बत होगी, अब जज्बात आपने इस्तेमाल कर लिए हैं, अब आपका दिमाग इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है कि इस जज्बे को लंबे अरसे तक कैसे रखना है, इस रिश्ते को कैसे बना कर रखना है, इसमें से कैसे इसकी खूबसूरतियाँ आपके अंदर ट्रांसलेट होंगी, इसको कन्फर्म करना है। और वो जब भी कोई वीक थॉट या नीच थॉट आपके जहन में आती है उस पर अमल नहीं करना है। वो एक थॉट है आपके जहन में जो आई है, बैकग्राउंड की वजह से आई है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आई है, चाह की वजह से आई है, चाहे जाने की वजह से आई है, इसके बदले किसी चीज़ के आप लेना चाहते हैं उसकी वजह से आई है, वो उठानी नहीं है। उसको फीलिंग नहीं बना, उसको फीलिंग नहीं बनाना है, वो मेयर थॉट है। अपने जज्बे से आपने जुड़े रहना है और आप देखेंगे थोड़े से वक्त के बाद आपको वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। जो जल्दी में कोई आपने जज्बाती होकर कोई ऐसा स्टेप नहीं ले लेना कि बनी बनाई मोहब्बत, बना बनाया दोस्त, बना बनाया काम बिगड़ जाए। हमारे लोग अपने रिश्ते हॉर्मोन्स की वजह से बर्बाद कर देते हैं, अपनी पुअर इम्पल्स कंट्रोल की वजह से बर्बाद कर देते हैं, एकदम बोल पड़ने की वजह से बर्दाश्त कर सकते हैं, चुप रह के देख लें थोड़ी देर। साइंस आपको बताती है कोई भी इम्पल्स, कोई भी यूफोरिक कॉल जिस पे आप गिव इन करते हैं वो 15 से 20 सेकंड सिर्फ दबानी और बर्दाश्त करनी होती है, उसके बाद चीज़ें आपके इख्तियार में भी आ जाएंगी। आपको समझ लग जाती है कि ये कितनी स्टूपिड थॉट है और मैंने कितनी गलत बात की और मुझे कितना अफसोस हुआ, अगले बंदे को कितना अफसोस होगा और मुझे वो मुकाम कैसे मिले जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये वो वीक थॉट्स को फीलिंग, एहसास बना लेना और अपने जज्बे को या जज्बात को ख़राब कर लेना, इसके खिलाफ हूँ मैं। जज्बात के कोई ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, वो इंसान को इंसान बनाते हैं, उसी के दिल में वलवला पैदा करते हैं, उसी से रब कहता है मैं दिल बदल देता हूँ। उसने कहा मैं दिमाग बदल देता हूँ। बाद में पता चला कि वहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं न्यूरॉन्स तकरीबन 40,000, तो वो भी उसमें भी थॉट्स और उसमें भी फीलिंग्स हैं। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको जब आप ऐसे सोचेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه تلق. That it is a good deed that you meet your brother with a smiling face.
5: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
6: You chase the dunya and its pleasures.

0: when the dunya was the punishment for Adam alayhim as-salam. A quote from Imam Hassan al-Basri.
1: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
2: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Focus, focus, reach the sky, open your books, give it a try. Every problem, every clue, knowledge grows in all you do. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
3: Around the world, millions face the ravages of conflict and natural disasters, leaving countless unable to observe their fast. But with your support, last year, we fed over 60,000 people across 14 countries. This year, the need is even greater, and your generosity can light up the world once more. Join UKIAM to feed the fasting Ummah. Donate now. Be the change. Share your blessings. Feed the fasting.
4: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
5: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
6: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
7: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
9: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
10: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
9: Nice of you. Thank you very much. Bahut hi khoobsurat thought diya. Dusri mere paas hai. Main uske baad baat karunga. Radio Azad, you're on the air.
11: Hello.
9: Hello.
11: जी अस्सलाम वालेकुम
9: वालेकुम
11: अच्छा सर मुझे ये पूछना है आपसे कि आपने अभी थॉट्स की बात की और आपने बात की कि जो नेगेटिविटी आती है आपके दिमाग में उसको अपने ऊपर सारी नहीं करना चाहिए राइट तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन दैट केस अगर दो बंदे एक रिलेशनशिप में हैं या उस तरह का रिलेशनशिप मीन्स के दे आर थिंकिंग दैट दे आर इन सम इमोशनल रिलेशनशिप या कुछ ऐसा ठीक है पसंद करते हैं या कुछ ऐसा तो उस वक्त भी तो नेगेटिविटी भी आती है पॉजिटिविटी भी आती है और फिर एक बंदे को लगता है कि दैट अदर वी डोंट हैव द कंपैटिबिलिटी या इस तरह उसमें आप क्या कहोगे
9: अच्छा नाइस ऑफ यू मैम थैंक यू वेरी मच सवाल बहुत अच्छा है जैसे अभी आपने कहा अब सवाल ये था कि दो बंदों एक रिश्ते के बीच में है उसमें भी पॉजिटिविटी आती है नेगेटिविटी आती है मैं एक्चुअली उसी के बारे में इससे पहले भी वही बात कर रहा था कि ये ऊंच नीच आती रहेगी इसमें आपने जो थॉट्स आपके जहन में आती हैं थॉट्स किन चीज़ों से आती हैं बाय द वे थॉट्स आती हैं जो आपने देखा है पास्ट में देखा है जो आपने किया है जो आप अभी कर रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं जो आप सुन रहे हैं जो आप समझ रहे हैं इन तमाम चीज़ों से मिलकर आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है धमाके होते हैं और उसमें से आप का आपके अंदर जो डोमिनेटिंग साइड है आपकी अगर आप दुखी रहने वाले लोग हैं या दुखी रहने वाले इंसान हैं तो फिर आप दुखी थॉट्स उठाएंगे जैसे गाने होते हैं, कुछ लोगों को दुखी गाने पसंद होते हैं, रीज़न उनके पास कुछ नहीं होता, उनको हैप्पी हैपनिंग हिप किस्म की चीज़ें नहीं पसंद होती, चॉइस आपकी अपनी होती है। इस चॉइस के पीछे बैकग्राउंड में जाके पता चल सकता है कि ऐसी चॉइस क्यों है, क्यों आप इस तरह सोचते हैं, क्यों आप इस तरह के हैं, और दूसरे लोगों को भी आप उसी तरह सोचवाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका एक फिर और बड़ा लंबा एक प्रोसेस है इसका। तो आपने ये देखना है कि थॉट जब आई है

दूसरा बंदा करेगा, इस तरह करते करते आप उनको आहिस्ता आहिस्ता, अगर इंसान के पुत्र हैं वो, तो ये सारी चीज़ें उनको समझ आ जाएगी और वो साथ साथ चल के, पहले अगर उन्होंने नहीं देखा तो अभी देख लेंगे। पुरानों के बिल जो हैं वो आपके ऊपर नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि जिस उम्र में हम हैं इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देख कर, सुन कर, समझ कर आ चुके हैं। हर आदमी को यही लगता है कि उसको बहुत पता है। दूसरी बात कि वो बंदा मेरे मुताबिक क्यों नहीं सोचता। देखें, गौर से ये बात सुनिएगा, आपकी जो आँख है ना, ये कलर इस वक्त जो मैंने पहना हुआ है ना, आपको ये कलर उस तरह नज़र आ ही नहीं सकता जैसे ये मुझे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बेहतर देख सकता हूँ, इसका मतलब ये है ब्रेन के अंदर जो जगह है जो कलर को प्रसीव करती है, मेरी आँखों का जो कलर है, ये तमाम चीज़ें मिलकर, वो लाइट जो इस वक्त पड़ रही है या नहीं पड़ रही, जिसको आप देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे, वो सब का सब मिलकर जो कलर बना रहा है, दूसरा इंसान वो कलर नहीं देख सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरे इंसान को इस कलर के नज़दीक नज़दीक ज़रूर दिखाया जा सकता है। अगर ये ब्लू है तो उसको ब्लू नज़र आ सकता है, और कलर ब्लाइंड बंदे को जो भी स्पेसिफिक रीजंस अभी मैंने बताए हैं उसके मुताबिक कभी ये कलर नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसको ये ग्रीन नज़र आता है, तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो बिल्कुल ऐसे रिश्ते कई होते हैं, एक ही चीज़ है दो डिफरेंट एंगल से देखने से। एक टेबल पर 6 लिखा हुआ है, मुझे वो 6 नज़र आ रहा है, उस तरफ बैठे हुए बंदे को 9 नज़र आ रहा है। गलत वो भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कैसे इसको फिगर आउट करेंगे, उसको मैं कैसे इस तरफ लाऊंगा, या मैं कैसे वहाँ जाकर देखूंगा भाई इसको 9 नज़र आ रहा है, तो फिर उसको समझाया जा सकता है कि ये चीज़ कैसे, और वो भी अंडरस्टैंड करेगा। अगर उसका कौवा सफ़ेद है तो फिर कुछ हो नहीं सकता उसके लिए, फिर आपको, फिर आप दो बंदे कमरे में बैठे हैं और एक स्टूपिड नहीं रहा, फिर दो हैं, और लंबे अरसे तक अगर आप ये काम चलाएंगे, और इनसे अगर आप कोई और चीज़ पैदा करेंगे तो फिर यही हालत ऐसी ही रहेगी, और फिर ये कभी चीज़ें सीधी नहीं होंगी। इसीलिए कंपैटिबिलिटी का कहा गया, इसीलिए कहा गया कि खानदान देख लो, इसीलिए कहा गया कि सोच देख लो, रहन सहन देख लो, कंपैटिबिलिटी फाइनेंशियल देख लो, ये 3-4 चीज़ें बताई गई हैं। इसके लिए दीन देख लो, ताकि राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, और कुछ एक्शंस जो आप लेते हैं वो एक जैसे रहें, ताकि ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, ताकि जब आप कोई ऐसी चीज़ या ऐसा बंदा या ऐसा रिश्ता बनाते या सिलेक्ट करते हैं, ये पहले सोचने की चीज़ें। फ़र्ज़ करें कोई बंदा कहता है जी पहले हमें नहीं पता था, जैसे खलीक कुरैशी साहब कहते हैं आज़ाद जी आप हमें 80 साल की उम्र में मिले तो अगली 10 साल में ज़िंदगी बदल गई मेरी, पहले मिल जाते तो और बहुत कुछ हो जाता। तो लेकिन उनकी ज़िंदगी बदली क्योंकि मैंने जो कुछ उनको बताया उन्होंने एज इट इज़ अप्लाई किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा मेरी 30 साल का ये एक्सपीरियंस है, 40 साल का वो एक्सपीरियंस है, मैंने दुनिया देखी है, आप अभी छोटे हैं, कम उम्र हैं, फ़लाँ हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। उनकी ज़िंदगी के 4 बड़े मसाइल थे, 4ों पर मैंने सिर्फ एक दफ़ा उनसे कहा, अगले दिन उन्होंने अप्लाई किया, 1-2-3 सालों में वो सब ख़त्म हो गए, एंड ही वॉज सो ग्रेटफुल। मैंने उनसे ज़्यादा किसी इंसान को ग्रेटफुल नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में। आज भी जब वो अल्जाइमर का शिकार है, इज़ 94 ईयर्स ओल्ड, आज भी जब वो मुझसे मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं आपके मुझ पे बड़े आसान हैं। मैंने, और कभी उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊँगा, और एक 85 साल का बंदा एक दिन मुझे कहता है आज़ाद आई वॉन्ट यू टू मूव इन विद मी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मैं कैसे मूव इन हो जाऊँ? तो मैंने कहा क्यों? तो आगे से कहते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू बिकॉज यू आर प्रेशियस। तो मैंने कहा सर मैं आपकी आधी उम्र का हूँ, मैं मतलब आपका, मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए, आप मेरे लिए खाना बनाते हैं, शौक से मुझे बुलाते हैं, मैं आपकी कंपनी इंजॉय करता हूँ, हम मिलकर चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, देखते हैं सुनते हैं उसके बारे में बात करते हैं, मैं आपसे इतने एक्सपीरियंस से इतना को लेता सीखता हूँ, तो ये आपका काम नहीं है करना, और जिस उम्र में आप हैं कुछ दिन आप मेरा काम करेंगे, फिर मैं आपके काम करता रहूँगा, और उसके बाद चीज़ें मसाइल का शिकार हो जाएंगी, फिर भाभी बच्चे बाकी लोग यू नो एक मसला एक बन जाएगा। तो हर बंदे का अपना तरीक़ेकार होता है बात करने का, चीज़ों को समझने का। जब आप फॉलो ही नहीं कर सकते ना किसी भी चीज़ को, ईमान ही नहीं है आपका, जब देखें ईमान के बारे में एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मेरे से बहुत लड़ते हैं ईमान के बारे में, एज इफ मैंने ठेका लिया हुआ है रब वाली साइड को क्लियर करने का और मैं वकील हूँ उनका, ना हमारी इतनी औकात है ना मजाल है। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ और ये मैं साबित कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी से और अपने इर्द गिर्द से और हुज़ूर पाक की इस बात से कि जो इंसान रब का शुक्रगुजार नहीं है वो बंदों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह जिस आदमी में फेथ है ही नहीं, बिलीव ही नहीं है उसका, वो इंसान जो 25-30 साल से उसके साथ रह रहा है वो उस पे देख कर सुन कर उसके एक्शन और उसके रिजल्ट के बावजूद उस पर ईमान नहीं ला रहा और उसके जहन ने उसको कौन किया हुआ है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और जिसने सब करके दिया वो नहीं है।
ऐसा बंदा रब पे मुझे कह रहा है जिसको मैंने देखा ही नहीं, मैं उस

0: पे बिलीव कर लूँगा, और कहीं पर भी उसकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता कि रब पे बिलीव है, ना सब्र है, ना तवक्कुल है, ना शुक्र है, ना जब मुश्किल तकलीफ़ वक्त आती है स्टैंड ले सकते हैं, ना किसी के साथ स्टैंड ले सकते हैं, तो कहाँ है रब हमारी ज़िंदगी? तो फेथ अगर नहीं है तो इंसानों पर भी नहीं, सच्चाई अंदर नहीं है तो नज़र भी नहीं आएगी, अच्छाई भलाई अंदर नहीं है तो हर एक पे शक रहेगा, झूठे को सब कुछ झूठ लगता है, शराबी को लगता है सब पीते हैं, सिर्फ बताते नहीं, छुप कर पीते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो इस तरह सोचते हैं, जो खुल के बोलते हैं, कम अज़ कम रब के मेरे पे इतनी मेहरबानी ज़रूर है कि ये दुआ करने के बाद क्या मेरे रब मुझे चीज़ों की असल हकीकत का इल्म दे, लोग खुल कर मुँह से बोल देते हैं, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, कत्ल क्यों ना हो जाए और बड़े ज़ालिम और गुनाह और मतलब ना हो जाए, चाहे कबीरा हो या सगीरा, क्योंकि कम्युनिकेशन के बग़ैर डॉक्टर को या वकील को काम बताए बग़ैर आपकी मर्ज़ी नहीं हो सकती। तो ये वो तमाम चीज़ें जिसमें साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग से होना है, चाह से कुछ नहीं होता, चाह आपके अंदर सिर्फ बेचैनी पैदा करती है, अगर तो इसका मतलब है आप कुछ ऐसी चीज़ चाह रहे हैं जो आपकी नहीं बनती, आप इज़्ज़त वाले काम करते नहीं और आपकी चाह ये है कि आपकी इज़्ज़त अफजाई हो, आप कदर कराने वाले काम नहीं करते और आप चाहते हैं कि आपकी कदर बढ़े लोगों की नज़र में, तो उसी वक्त एंग्जाइटी स्ट्रेस शुरू हो जाएगा आपको, बिकॉज आप उसके लिए कुछ एक्शंस नहीं ले रहे, प्लान कहाँ है, रिजल्ट्स कैसे आएंगे? दीवाने के ख्वाब में आखिर में दीवाने को वो मिलता नहीं है जो उसको दिखता है या वो दिखाता रहता है ख़ुद को, वो एक हवा सा होता है, लेकिन ख्वाब वो जो आपको सोने ना दे, अक्सर तो लोग आपसे कहते हैं, लेकिन ख्वाब वो जिसके ऊपर आप जब चलें हर वक्त हर सांस हर लहजा उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, खिलवत में हैं, जलवत में हैं, लोगों के साथ हैं, अकेले में हैं, कुछ सोचते हैं, डायरेक्शन आपकी उस गोल की तरफ है जिसमें आप जा रहे हैं, एंटरटेन करें, खुश रहें, जो मर्ज़ी आप करते हैं, कोई भी चीज़ आपको बेचैन नहीं करेगी, क्योंकि आप उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जिसकी मंजिल छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आप हिट करते जा रहे हैं और स्ट्रेस कम होता जा रहा है, मोटिवेशन बढ़ती जा रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती से आप अपने साथ नहीं रख रहे, वो एफर्टलेस ईज से साथ चल रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती एग्जॉस्ट कर देगी, दूसरे बंदों की विल आपके इख्तियार में नहीं है, इसीलिए फ्री विल है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, दूसरे क्या सोचें, क्या करें, कैसे करें, यह आपका और मेरा करने का काम नहीं है। इवन पैगंबर को कहा गया आप क्यों दुखी होते, आपका काम सिर्फ पैगाम देना है, उसके बाद जो जिसने किया, जो जिसकी एफर्ट, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। कोई मेहरबान हमारे साथ करते हैं उनसे बात, रेडियो आजाद जी रोंदे,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: क्या हाल है? तो सुना
0: अल्लाह का करम, सो क्या जो
1: शुक्र है अल्लाह। अच्छा कुछ गल
0: नोट, तो सुने गल नोट की थी, इनको बोलने वाले सारे मुझ अथरेन और देखें, और हिंदू को कमाल जबान है, अब मुच जब हम कहते हैं ना इसका मतलब है बहुत, और हिस्पैनिक्स कहते हैं मूचो ग्रासियस, तो ये सारे वर्ड, ये सब कुछ है, ये बंदों ने सब फ्रॉड किया हुआ है, ऐसे वर्ड्स निकालते हैं उसको हिलाते जुलाते हैं उर्दू हिंदू को पंजाबी वाले, और कहते हैं जी ये इसका लफ्ज है, ये उसका लफ्ज है, मिक्स करके सारी बातें एक जैसी हैं, जैसे हमने रब को मुख्तलिफ नाम दे के अलग अलग डाकखाने बनाए, अलग अलग लड़ाई झगड़े बनाए, और रब वही है तो नाम कुछ भी रख लें आप उसका।
1: कुछ चीजें शेयर करनी थी,
0: करिए ना।
1: अच्छा सो घर में देसी के नाते माँ का जो रोल होता है बेसिकली रोबोटिक स्टाइल, और उसमें वो ये समझ रही होती है कि मैं बहुत हेल्प कर रही हूँ।
0: एक मिनट मेरे साथ होल्ड करना है, एक मेहमान को हमने ऑन एयर रखा हुआ है और वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से कॉल आ रही है, पहली व्हाट्सएप की कॉल है, मुझे उनको लेना है। रेडियो आजाद जी रोंदिया,
2: आजाद जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी।
0: हीरा सिंह जी की हाल है? सारे चीजें ऐसी डिसरप्ट करके, ऐसी पहले क्या शेर आया हैं जी जी क्या हाल है?
2: शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया, आई फील एब्सोल्युटली ऑनेस्टली ग्रेटफुल, लाइक यू नो यू एक्चुअली पुट मी ऑन द एयर एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग।
0: वी विल वेट, हम सबको यही सब्र शुक्र सीख रहे हैं, देयर आर अदर पीपल आल्सो वेटिंग इन द लाइन, और कुछ को मैं ड्रॉप कर देंगे और बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम सब एक दूसरे सब्र करके सीखेंगे, मैं भी कर रहा हूँ आप भी करेंगे, एंड यू नो पीपल पुट अप विद अस फॉर लॉन्ग, सो व्हाई नॉट जी।
2: सर दो चीजें अभी आपकी बातों से, जो एक चाह की बात कर रहे थे और रब की बात कर रहे थे
0: जी,
2: और मैंने बैठे बैठे इंटरनली रियलाइज सो मच, लाइक चाह आई बीन फाइटिंग फॉर एजेस to be authentic.
0: जी.
2: But वो मेरी चाह इतनी strong थी that I forgot to take the path which would take me towards being authentic. I just concentrated so much on being authentic. मैं अपने अंदर झांकना ही भूल गया.
0: आपने ना?
2: And then
0: मेरे साथ एक बात थोड़ी सी बीच में मैं आपको इसके बारे में बात बताना चाहूँगा. एक मूवी है, ज़रूर देखिएगा, द बुक ऑफ ईलाई, डेंजेल वॉशिंगटन की फिल्म है. उसमें उस बंदे के पास बाइबल का एक ही नुस्खा, एक ही कॉपी रह जाती है, और उसको ले के उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो. और उसके लिए विलन जो होता है वो पावर बन चाहने के लिए, ऑथेंटिक होने के लिए, लोगों को अपने यू नो सबसर्वियंट करने के लिए उसको वो किताब चाहिए होती है. उसने सारे बंदे अपने भेजे होते हैं हर तरफ से, और यहाँ पे एक बंदा जो कि वॉरियर होता है उस किताब को प्रोटेक्ट करके, और उसके लिए वो हर किस्म की कुर्बानी देता है. और आखिर में जब वो किताब वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ उसको प्रेस में जहाँ पहुँच जाना चाहिए, तो उस फिल्म की आखिरी लाइन्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत है. इसीलिए जो मैं अभी अपनी फिल्म लिख रहा हूँ उसमें आखिरी लाइन्स में बिल्कुल पावरफुल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि थॉट प्रोवोकिंग हो, लोग उसके बारे में कुछ सोचें. उसमें वो कहता है कि आई वॉज सो कॉट अप इन प्रोटेक्टिंग द बुक दैट आई फॉरगॉट टू डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉज सपोज टू डू, एंड दैट इज टू लिव बाय द बुक. मसला ये है कि जो जैसे अभी आपने कहा ना, मैं ऑथेंटिक बनने के लिए फाइट कब से कर रहा हूँ, और मैं ऑथेंटिक हो नहीं पा रहा, और मैं बार बार वो हदफ गोल जो है वो मिस कर जाता हूँ. पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो अभी तक आपने नहीं की, इसीलिए उस चीज़ के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो है स्टॉप फाइटिंग. इज़राइलाइट्स जो है ना, इज़राइल बेसिकली हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था, इज़राइल. इज़राइल का मतलब है द वन हु रेसल्स विद गॉड, बिकॉज दे वर सो पावरफुल, और अपनी विल के साथ, कि रब की विल के साथ लड़ने को द वन हु रेसल्स विद गॉड. और इस्लाम कहते हैं द वन हु गिव्स इन टू द विल ऑफ गॉड, तस्लीम कर लेता है, उसको मान लेता है. जब आप चीज़ को स्ट्रगल करना बंद करेंगे, जोर लगाना बंद करेंगे, शायरी जोर ज़बरदस्ती जोर से नहीं निकलती, जोर लगाने से काफ़ी रदीफ नहीं होता, उसमें अपने आप को सिर्फ सुकून में रखना होता है, और ब्रेन वेव एक आती है उसको पकड़ना होता है. आर्टवर्क्स जोर लगाने से नहीं पैदा होते, कोई भी खूबसूरत नफीस, क्योंकि आर्टवर्क नफीस काम को कहते हैं, डेलिकेट काम को कहते हैं. कोई भी चीज़ जो डेलिकेट होती है वो जोर लगाने से नहीं की जा सकती. शायर कहता है ना, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है. तो बिल्कुल इसी तरह इसको, डेलिकेट चीज़ को, रिफाइन चीज़ को जोर ज़बरदस्ती से नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ महसूस करना है, एहसास करना है, और फिर अपने आप को ढीला छोड़ना है. ऑथेंटिसिटी खुद ब खुद आ जाएगी, जोर लगाने से, अपने आप को बीट अप करने से नहीं आएगी. आप एक पाथ के ऊपर हैं, उस पैथ पे आपने गोल बनाया हुआ है, उसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स आप हिट करते जाएंगे, और अक्सर नहीं हिट हो रहे होंगे. वहाँ पर अपने आप को बीट अप नहीं करना है. आप तो अच्छे आदमी, आप पहले से कोशिश कर रहे हैं, कंडीशनिंग आपको तोड़ रही है, एनवायरनमेंट आपको तोड़ रहा है, तो आप ये सब आपको तोड़ रहे हैं, लोग आपको तोड़ रहे हैं, सेट ऑफ बिलीव्स आपको तोड़ रहे हैं, आप खुद भी खुद को तोड़ रहे हैं. तो ये नहीं करना है, वो तोड़ रहे हैं, आपको जोड़ के रखना है, और इस पर अपने आप को ठंडा रखना है. हो जाएगा, कर रहा हूँ कोशिश, और मुस्कुराना है. इस दफ़ा फिर फेल हो गया हूँ, गुस्सा तोड़ना चाहता हूँ मैं अपना, गुस्सा नहीं करूँगा, क्योंकि गुस्सा हराम है, क्योंकि ये अकल को खा जाता है, क्योंकि इससे आदमी की सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इससे लोग स्टंट हो जाते हैं, अपने आप को रिजिड बना लेते हैं, लॉक कर लेते हैं ख़ुद को. ओके, प्यार से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, अपने साथ भी उसी तरह कहना है कि जिस दिन गुस्सा आया बाद में कुड़ता है, क्यों आया, किस एनवायरमेंट क्यों आया, क्या किया मैंने, उसने क्या किया, मेरा क्या गलत था, उस पर मेरा कंट्रोल है नहीं, मुझ पर है, हाँ है, कैसे बदलूंगा, अल्फाज कौन से बदलूंगा, कम मिल लूँगा, कम अब जब तक मैं इस काबिल नहीं होता आगे नहीं जाऊँगा. बिल्कुल एलर्जीज़ की तरह, जैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ 30-40 साल से, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एलर्जीज, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एस्मा, आई ऑलवेज थॉट आई हैड नो प्रॉब्लम विद ADHD, कुछ नहीं था, मुझे पता था मैं एक दिन इसमें से निकल आऊँगा. जब तक मैं जोर लगाता रहा, कुड़ता रहा, मैं क्यों, दुखी होता था. जब मुझे समझ आया मैं ही कर सकता था, इसलिए कि बाकी सब कुछ जो मुझे मिला है उसके साथ ये चैलेंजेस हैं, इसको एक्सेप्ट करो, ढीला छोड़ो खुद को, वक्त के साथ ये चीज़ें ठीक होंगी. और फिर एक वक्त आया, स्टैमरिंग भी ख़त्म हो गई, एज़मा भी ख़त्म हो गया, एलर्जी बहुत कंट्रोल में है, सांस नहीं बंद होता है, चीज़ें आराम से सारी एक्सरसाइजेस हो जाती हैं. ये करते करते एक स्ट्रेंथ बिल्ड होगी अंदर, माइंड में, माइंड ओवर मैटर वाली, جس نے میٹر کے اوپر جو فتح حاصل کر لی, وہ آہستہ آہستہ جسم کو ایکسرسائز کر کر کے کمزور تھا تو وہ بھی اس کی نے بھی اسٹرینتھ پکڑ لی. باقی سارے والے دے آر فالنگ اپارٹ, کھل رہے ہیں سارے کے سارے ہمارے ارد گرد, لیکن وہ مسلسل کرنے ہی اصل کام ہے. کنسسٹنسی, ایک چیز کے اوپر کنورج کر دینا تمام چیزوں کے, اور اس کے بعد نہیں ہوتا تو پھر گو ایزی آن اٹ. پھر لوگ ان لوگوں سے ہیلپ لینا, اس انوائرمنٹ سے ہیلپ لینا, ان باتوں سے ہیلپ لینا, ان ورڈ سے ہیلپ لینا, اس کتاب سے ہیلپ لینا, اس ماحول سے ہیلپ لینا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سائڈ کیا ہے, کیونکہ آپ اپنی انرجی وہاں سے لیں گے. لیتے رہنا اور پھر انرجی ساتھ ساتھ دیتے رہنا, یہ پورا ایک پروسیس ہے میری جان. جب آپ یہ کرو گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلو گے چلے گا, آپ یو ول بی لائٹ ایز اے فیدر ون ڈے. اسٹوڈنٹ جب تیار ہوتا ہے تو ٹیچر اپیئر ہوگا. آپ جب اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑیں گے تو آپ کو زور لگانے سے چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. میں بھی یہ کرتا رہا ہوں 30 سال, اس لیے بتا رہا ہوں. بعد میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سب کچھ دکھتا ہے, سب نظر آتا ہے. آوازیں 30-30-40-40 سال پرانی یاد رہتی ہیں, میمری اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ورڈ جو وہ والی خواہشات اور باتیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں رہیں وہ پکی ہو جاتی ہیں, باقی ذہن سے محو ہو جاتی ہیں جو آپ کو کمزور کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ چینج ہوں گی. اٹس اے بیوٹیفل پروسیس. اس میں آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے, میں صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں بہتر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, میں اوتھینٹک ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. وقت پہ چیزیں آہستہ آہستہ مجھے ملنی شروع ہو جائیں گی, نظر آنی شروع ہو جائیں گی. نہیں بھی ملتی ہیں, آئی ایم ہیپی دیٹ آئی ایم آن دس پیتھ. آئی ایم ہیپی دیٹ میں جب رات کو سوتا ہوں میرا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی پلان ہوتا ہے. صبح اٹھ کے میں کسی کام پہ لگتا ہوں, میرے ارد گرد 2-4 لوگ ہیں جو میری عزت کرتے ہیں, پیار محبت کرتے ہیں. نہیں بھی کرتے وقت پہ کریں گے, کر لیں گے. میں ان کے لیے اچھا سوچوں گا, میں ان کو گھر سے نکلتا ہوں ان کو کچھ دینے کے لیے. لینے کے لیے کچھ نہیں, کیونکہ دینے والے نے مجھے ایسا بنایا ہے تو میرے اندر اس کا اسپارک ہے. میرے اندر لینے والوں کا اسپارک نہیں ہے, دینے والے کا اسپارک ہے. تو میں گیونگ پہ کیسے دھیان دوں, اگلے خود ہی گیو کرنے آ جائیں گے. گیو ان بھی کر دیں گے, گیو اپ بھی کر دیں گے, گیو بھی کریں گے, ریسیپروکیشن بھی شروع ہو جائے گی, سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے یہ سب کرنے میں 25 سال لگے ہیں. تو اسی لیے میں کسی بھی بندے کو جب وہ راستے میں, بہت جلدی لوگ تھک جاتے ہیں, تھکنا نہیں, اک جاتے ہیں, اکنا نہیں, اور بار بار ایک ہی رزلٹ دیکھ کے پک جاتے ہیں, پکنا نہیں ہے. ڈھیلا چھوڑنا ہے, چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے, ہر دفعہ مسکرانا ہے. جب بھی گڑبڑ ہو جائے گی, ریئیکشن بدلیں گے تو آپ کے ایکشن آہستہ آہستہ بدلیں گے. ہماری ساری زندگی ریئیکشنری ہے. ایکشنز تو بہت بعد کے آتے ہیں, امپلس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے, اس میں بہتر ہونا ہے, اس میں اپنے آپ پہ قابو پانا ہے, سلولی اینڈ گریجولی. رونا آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے. میں نے آج تک کبھی اپنے آنسو روکے ہیں؟ میں نے آپ سے 10 سال پہلے کہا تھا جب بھی میری آواز تب صرف کمزور ہوتی ہے یا گلو گیر ہوتی ہے یا مجھے جیسے میری آنکھوں میں جیسے کوئی بندے کی آواز میں آنسو اتر آتے ہیں, وہ صرف تب ہوتا ہے جب میں رب کے لیے گریٹفل ہوتا ہوں. گریٹیٹیوڈ میری آنکھوں میں آتا ہے جب لوگ مجھ سے پیار محبت کی بات کرتے ہیں. آپ مجھ پہ سختیاں کریں, ناراض ہوں, لڑائی کریں, جتنا آپ نے مجھ سے لڑنا ہے میں کبھی نہیں تھکوں گا, نہ میں مجھے کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے نہ میں, اور جو مجھے ایموشن آتا ہے میں اس کو روکتا نہیں. وہی نظموں میں آتا ہے, وہی محبت جس کو میں دیکھتا ہوں تو آتا ہے. وہ خلیق صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میرا جب ہاتھ پکڑتے ہیں پیار محبت کرنے والے لوگ, مرد ہوں, عورتیں ہوں, بچے ہوں, بڑے ہوں, میں دیکھتا ہی نہیں ہوں وہ کون ہے. صرف پیور ٹرانسفر آف انرجی پہ میرے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ نے بھی اپنے آپ کو ویک نہیں سمجھنا ہے, یہ اچھی چیزیں ہیں, یہ آپ کے اندر رب یہ سب نے اس نے رکھا ہے. آپ کو صرف صحیح وقت پہ, بعد میں یہ بالکل صحیح وقت پہ نکلے گا. کبھی آپ کو کوئی ویک پرسیو نہیں کرے گا. یہ اسٹرینتھ ہے آپ کی. جس دن انسان ہونا اسٹرینتھ ہے, ایموشنز ہونا اسٹرینتھ ہے, لاجک اور ریزن ہونا اسٹرینتھ ہے, جب آپ ان کو اسٹرینتھ کے طور پہ اپریشیٹ کریں گے, سیلیبریٹ کریں گے, یہ آپ کے ہاتھ پاؤں بن جائیں گے. یہی پورا پروسیس ہے, اسی کو صرف فالو کرنا ہے. گارنٹی میں دے رہا ہوں, آج تک میں نے جس کو جو گارنٹی دی ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہوا ہے, کام پورا ہوا ہے. ڈاکٹر اگر ایک چیز کی گارنٹی دے رہا ہے کہ درد ختم ہو جائے گا تو اس نے 25 سال تک یہ کر کے خود پہ اپلائی کر کے دوسروں کے اپلائی پہ دیکھا ہے. دوائی صحیح نہیں لی جا رہی, ڈوزز کو ایڈجسٹ کرنا ہے, انوائرمنٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, کون سی چیزوں سے درد بڑھ رہا ہے, کیوں ہے یہ درد, اس کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے. اور سلولی اینڈ گریجولی جیسے جیسے درد کم ہوگا آپ کا اصل پرسنالٹی آپ کی باہر آئے گی. ابھی فیئر ہے, ڈر ہے کہ درد پھر ہو جائے گا. ڈرنا نہیں, ہم دنیا میں کشتی بندرگاہ پہ کھڑی ہونے کے لیے نہیں آئی بنی ہے, शिप इसलिए नहीं बनाई जाती कि वो खड़ी रहेगी बंदरगाह के ऊपर, पोर्ट के ऊपर, वो दरियाओं में, समंदरों में जाने के लिए बनी है। वो वियर एंड टीयर भी होगी, कभी कभी घबराहट और डर भी होगा, लेकिन वही कोहना मश्क सेलर्स बनाती है, वही वो बंदे बनाते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। रब यही चाहता है इंसान से कि इंसान जो काम फरिश्ते नहीं कर सके, जिन नहीं कर सके, इतने पावरफुल हैं। हम वीक फिजिक बॉडी के साथ भी, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर और हमारी जो विल पावर है और जो चीज़ें हमें दी गई हैं उनको भी नहीं दी गई, वो एक दिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो रिफाइंड हो रहा है। हज़ारों साल लग गए उसको रिफाइंड होने में, तो हम भी कोशिश करेंगे रिफाइनमेंट की, और अगली जनरेशन, हमारा स्टूडेंट, हमारे लोग, हमारे प्यार करने वाले आगे हमको ले कर चलेंगे इन थाट्स को, इन बातों को। ये वो दरख्त है जो 100 साल में लगता है और उसके बाद 1000 साल तक चलता है। तो इस तरह चीज़ों को देखना और सोचना है। I hope it made some sense.
2: Oh, sir. It was too many things going on for me at the same time. And at the same time, I was emotionally connecting to you, or I was a little bit busy collecting my own, you know, tears at the same time.
0: Koi masla nahi. I was also doing the same thing. You just couldn't feel it in my eyes because I'm wearing glasses. And inside, I was feeling what you're going through also, but at the same, because I have been there.
3: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर। आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
1: आप लुटन से समात फरमा रहे हैं। Inspire FM 105.1.

छोटे छोटे गुनाह करता है तो बस उसका दिल जो है बिल्कुल जो है उस पर पर्दा पड़ जाता है, फिर उसको असल नकल में पता भी नहीं चलता कि मैं ठीक कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। और वो जो इंसान ये समझता है कि सारी की सारी चीजें मैं ही ठीक कर रहा हूं, कभी कभार वो भी गलत होता है। लिहाजा हमने अपने आप का एहतसाब करना है, मुहासबा करना है, हमने जो शाम के वक्त हमने देखना है कि दिन के वक्त मैंने कौन कौन से काम किए, कौन से अच्छे किए, कौन से बुरे किए। तो मैं समझता हूं अगर हम ये जो बुरे काम गलत काम है इनको एक आस्ते आस्ते करके छोड़ दें, आस्ते आस्ते करके एक दो दो करते करते करते इस महीने में अगले महीने में ये चीज़ें छोड़ दें, तो इंशाल्लाह फिर जो है वही बात, फिर वो रोशनी, वो शीशा जब दिल का साफ होगा तो रोशनी आना शुरू हो जाएगी, फिर वो नूर जो है वहां से वो सब कोई नजर ना अंधेरे में रोशनी हो जाएगी। और फिर वो जो ये जो तख्त है जिस पर किसी और का कब्जा है उस कब्जे को छुड़ा लिया जाएगा, और फिर जो है जब वो साफ हो जाएगा तो फिर वो तख्त वाले जो है असल जो मालिक हैं वो इस पर विराजमान हो जाएंगे। तो मेरे उस्ताद ग्रामी फरमाया था ना कि चंगा साफ कर दिल दा खूब बेड़ा जिथे यार प्यारे ने आ बेणा, ये पंजाबी में है कि जब ये साफ हो जाएगा तो फिर सारा काम हो जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह पाक हमें ये दिल की जो है वो तारत, बाहर की तारत तो हम बहुत करते हैं, हर रोज़ करते हैं, बल्कि दिन में कई बार करते हैं, अच्छी बात है, ये मैंने कभी नहीं कहा कि ये गलत है, अच्छी बात है, सफाई निसफ ईमान है। लेकिन यकीन करें अगर हम इसी बात को अंदर थोड़ा ले जाए इधर कि अंदर की सफाई हम कितनी करते हैं, तो फिर जवाब जो है वो बड़ा मुश्किल से शायद सिफर ही आएगा। सबसे पहले मेरा जवाब यही आएगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर, रूहानी सिस्टम के अंदर, दुनियादारी के अंदर तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन रूहानी सिस्टम के अंदर अच्छा लिबास पहनना, अच्छा हर चीज़ को साफ रखना, ये सिस्टम सारे का सारा अंदर है। यकीन करें जब अंदर साफ हो जाएगा तो फिर आपकी जो नज़र है ये नज़र नहीं रहेगी, वो दूसरी नज़र एक आ जाएगी, और वो नज़र ऐसी होगी, अल्लाह साहब फरमाया था ना इसी नज़म तुलू इस्लाम में कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहें मुर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये इसी निगाह की बात कर रहे हैं ना, वो कहते हैं उसके ज़ोरे बाजू का जो अंदाज़ा लगाना वो तो किसी के पास की बात ही नहीं है, उसके अंदर जोर कितना है, उसकी नजर में सिर्फ वो देखने से जो है हजारों जो लाखों अरबों लोगों की जो है तकदीरें बदल जाती हैं, हैं जी। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमें बस असल में आज जो हमने क्या करना है यही हमारा जो है वो मजमून है, और यही हमारा तसव्वुफ है, यही हमारा मजमून है। लम्हा साहब भी यही करते हैं कि ज़ाहरी और बातनी वही ये फरमा दे किनारा अज़ाहिदों, इसी नज़म इसी जो हम पढ़ रहे तुलू इस्लाम नज़म इसी में कि ज़ाहिद से किनारा काश हो जा और उस ग्रुप में शामिल हो जा जो सही रास्ते पर है। अब मजाजम जो है वो और बात है, हकीकत इसकी ये है। तो बहरहाल चूंकि हमारा फिर वही बात कि ये हमारा जो है वो हमारा टॉपिक मजमून जो है रह जाएगा, असल में हमने तुलू इस्लाम नज़म जो है शुरू की थी तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है कि देखें बड़ा टाइम हुआ है ये काम शुरू किए हुए, लेकिन मुझे फिर भी बड़ी खुशी है कि एक जवाबी शिकवा हमने मुकम्मल की, अल्लाह साहब की बहुत प्यारी नज़म जवाबी शिकवा वो हमने मुकम्मल की। इसके बाद जो है वो आज ये नज़म तुलू इस्लाम जो है ये काफ़ी टाइम से शुरू की हुई थी, ये भी आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद इंशाल्लाह अगले हफ्ते से इसके साथ एक नज़म थी दुनिया इस्लाम। वैसे प्रोग्राम मेरा ये था कि जो अल्लामा साहब की जो नज़में जवानों के बारे में हैं कि वो नौजवान उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, जवान क्या करना चाहिए जवान को, जवान जो है वो उसकी क्या वो शाइन के साथ उसकी क्या मुमासलत है, पर ये जो है वो इंशाल्लाह जल्दी हम पेश करें। लेकिन अब दुनिया के हालात को देख कर ये जो नज़म है ये भी मुसलमानों को जगा देने वाली है। अल्लामा साहब की शायरी जहाँ से भी शुरू की जाए, जहाँ से भी आप शुरू करें, बस सिर्फ ये है शुरू करें लेकिन उसको थोड़ा सा जो है डीप डाउन को कहते हैं थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करें। सब कुछ यहाँ पर आपके पास मौजूद है, आप उसके ऊपर से गुजर कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। ज़मीन के अंदर खजाने मौजूद हैं, आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े खजाने, ये तेल है ज़मीन के अंदर, सोना है, इसके बाद गैस के जखायर हैं,
और बेशुमार मिरर्स हैं जो बड़ी

मिलती है, लेकिन क्या है, हमें वो निकालने का चज हमारे पास नहीं आया, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तरीकाकार नहीं है। इसी तरीके से ये जो बातनी उलूम है ये भी इसके अंदर मौजूद है, उनको भी कुछ सलीका और तरीका अगर हमें आ जाए तो फिर ये बातें जो है वो एक एक बात पर रात गुजर जाए। लेकिन कम अज कम मैं समझता हूं अगर इंसान तगो दो करे, कोशिश करे, और कोशिश भी करे और किसी पूछने वाले के साथ बैठे भी, किसी बुजुर्ग से बैठे, उसके ये ना चेक करे कि इसके पास तालीम नहीं, इसके पास डिग्री नहीं थी, मैं तो इतनी मेरे पास तालीम, मैं मुझे इससे ये क्या हासिल होगा, नहीं नहीं ये बात जहन से निकाल दे। हो सकता है कि एक नुक्ता हासिल आ जाए, एक नुक्ता आपको मिल जाए तो सारी जिंदगी जो है वो आपकी समझ जाए। तो बहरहाल अल्लामा साहब की यह नज़मतुल इस्लाम इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। ये फारसी ज़बान में असल में थी, अल्लामा साहब की ज़्यादा शायरी है फारसी ज़बान में, बहरहाल हम उसको आज इंशाअल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। उसमें पिछले जो हिस्से में हमने पढ़ा था कि दगर शाखे खलील अज खून माँ नम नाक मी गर्दद बे बाजार मोहब्बत नकद माँ कामल यार अहमद, यानी ये इस नज़म में मरकज़ी ख्याल इस नज़म का ये है कि अल्लामा साहब जो हैं वो अल्लाह पाक से अर्ज़ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उसके दर से जो है वो मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला अब हम थोड़े से कुछ हमें एहसास हो गया है, हमें बड़ी बड़ी जो है वो मार पड़ी है, हमें बड़ी जो है वो शिकस्त खुर्दा कौम बन चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के थोड़ा सा एहसास पैदा होना शुरू हो गया है, ये जो तुर्क हैं यहाँ से ये काम शुरू हुआ है, बाकी इलाकों में भी ये बड़ी खुशी की लहर जा रही है, अब हमें सिर्फ मदद आपकी है, आपकी मदद की हमें ज़रूरत है, हम जिस रास्ते से भटक चुके थे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता हमने छोड़ दिया था, अब हमने उनके रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, और जब हम उधर चल पड़े हैं तो अब सारी सारे हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, तो ऐ पाक अल्लाह पाक हम पर करम फरमा। फिर अल्लाह पाक की तरफ से आवाज़ आती है, गैबी आवाज़ है कि अब जो है वो मुझे पता चला है कि तेरे दिल के अंदर बड़ा दर्द और सोज वाली आवाज़ पैदा हो चुकी है, मैंने इस आवाज़ को जो है वो सुनने में बड़ा अरसा गुजर गया था, यानी वो मुसलमान जो थे वो जो इस किस्म के जो उनका नीयत थी, इस किस्म के जो काम करने वाले तो ख़त्म हो चुके थे, पर अब दोबारा जो है ये जोश जज्बा देकर जो है वो मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ अभी भी अपने आप को इस तरीके से ठीक कर, ये कर वो, ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरीके से वो जायदू से किनारा काश हो जा, और उसके बाद जो है वो अपने आप को जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर। फिर आगे जो अभी ये फरमाया था कि ये जो मुश्ताक हैं, ये इश्तियाक रखने वाले हैं, ये आशिक हैं, ये तालब हैं, ये सालक हैं, इनको जो है हज़ूर पाक सल्लम की वो वाक़यात याद करा कि ग़ज़वाए उनैन के अंदर और ग़ज़वाए बदर के अंदर क्या हुआ, और उसके बाद जो है फिर जो जो चीज़ें तेरे अंदर जो है वो छुपी हुई थी उनको अब वक्त आ गया ज़ाहिर करने का। ये जो बातनी इल्म होते हैं ये एक ज़खीरा है, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर वो इंसान पर को बता दी जाए तो फिर जो है वो फतवे भी लग जाएंगे और बेशुमार ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, लिहाजा अल्लामा साहब ने ये आवाज़ ही आ रही है कि अब वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त आ गया है। देखिए कोई भी मज़मून जब आदमी पढ़ाता है तो पहले दिन जो है वो मुश्किल सवालात वो आस्ते आस्ते उसको लेकर जा रहा है, यही बात सबफ़ की भी है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है आगे जो फरमाते हैं कि इसकी क्या है कि ये जो खूने ये जो शाख खलील थी ये उम्मत मोहम्मदी जो अज़ुर पसल उम्मत है ये जो है वो उम्मत अनीफा है, ये जो उम्मत है अज़र इब्राहिम सलम की नसर से ये सारे का सारा जो सिस्टम आ रहा है, अब क्या था कि इस पर खिज़ा आ चुकी थी, अब जो है वो कुछ ये जो शाख है ये नम नाक मी गर्दद थोड़ा इसमें जो नमी आ चुकी है ये दोबारा अरी हो रही है, इसलिए जो है वो हम ये समझते हैं कि इस मोहब्बत के बाज़ार में जो चीज़ें जो है वो हमने ये अपना सब कुछ पेश किया था वो रायगा नहीं गया। देखें जब ये इस किस्म की बातें होती हैं जब आदमी अल्लाह की राह में चलता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ जो है वो माली नुकसान भी होता है, जानी भी होता है, और बेशुमार चीज़ें भी हो सकता है, उसका घर हर चीज़ जो है ख़त्म हो जाए। तो जब एक आदमी ये सारी पूंजी लगा रहा है इस राह में और उसको फिर आसन होना शुरू हो जाए तो अल्लाह साहब यहाँ फरमाते हैं कि अब जो है हमें यकीन हो गया है कि मैंने जो वो पूंजी हमने लगाई थी वो जो मुसलमान रास्ते पर चल पड़े थे उनको बहुत कुछ हासिल हुआ है और हासिल हो रहा है।
और हमारी जो पूंजी थी, हमारा जो जो कुर्बानी थी वो रायगा नहीं गई, बल्कि तो मैंने यहाँ पर कहा था कि एक होता है अयार, एन पर जबर हो तो अयार बन जाता है, ये कहते हैं फलां बड़ा अयारी कर रहा है, तो उसका मतलब चालाक चालबाज धोखाबाज को कहते हैं, और एक के नीचे जेर लगा दी जाए ईयार, ये फारसी जबान में है, उसका मतलब ये बड़ा खुरा बड़ा आला बड़ा मयारी। तो यहाँ पर पिछले बंद में उन्होंने फरमाया कि वो जो हमारा माल था उसकी बड़ी वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा हमने जो ख़रीदा है या बेचा है उसका, वो जो हम सही रास्ते पर हम जो है वो हैं। बहरहाल हमने आगे दो जो हमारे बंद रहते हैं उसमें अल्लाह फरमाते हैं, सर खाके शहीदे बर्ग हाए लालमी पाशम, सर खाके शहीदे बर्ग हाए लालमी पाशम के खून शे

0: Thank you.
1: Hi, hello, my name is Jazz. I'm here visiting the Lee Grave Masjid on Visit My Mosque Day. Please continue listening to Inspire FM at 105.1.
2: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
3: The difference between a believer and one who does not believe is that the believer primarily turns to Allah. Before everything, we say Bismillah.

0: Hadith 18. Narrated Ibn Umar, Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, I have been ordered, by Allah, to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity. So if they perform that, then they save their lives and property from me except for Islamic laws, and then their reckoning, accounts, will be done by Allah. Hadith 19. Narrated Abu Hurairah, Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, was asked, what is the best deed? He replied, to believe in Allah and his apostle, Muhammad. The questioner then asked, what is the next, in goodness? He replied, to participate in jihad, religious fighting, in Allah's cause. The questioner again asked, what is the next, in goodness? He replied, to perform Hajj Mabrur, pilgrimage to Makkah, which is accepted by Allah and is performed with the intention of seeking Allah's pleasure only and not to show off, and without committing a sin and in accordance with the traditions of the Prophet. Hadith 20. Narrated Sa'd, Allah's Messenger, peace and blessings be upon him.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Wednesday, 3rd of June for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. US and Iran launch new strikes as Kuwait says airport hit by Iranian drones. US announces new tariffs over forced labor concerns. 7 killed after drone hits bus in Russia-controlled part of Ukraine. Mahmoud condemns violence at protest over Nowak murder as police chiefs review anti-racism guidance. 3/4 of workers not on track for moderate pension income, report suggests. Royal Navy helicopter crashes into field. Liverpool agree deal with Iraola to succeed Slot. And other details. The US military said it launched self-defense strikes on Iran overnight and shot down ballistic missiles and drones fired at ships and Gulf countries. The strikes on Keshem Island in the Strait of Hormuz were in response to attempted attacks by Iran across the Middle East, US Central Command said. Iran said it had attacked US bases and helicopters in a regional country using missiles and drones in a retaliation. CENTCOM said Tehran fired 2 missiles at Kuwait and 3 at Bahrain, all of which broke apart or were intercepted. Kuwait's army later said Iranian drones had hit its international airport, causing significant building damage and injuries to a number of people. US has announced new tariffs on dozens of countries of 10 to 12.5% over concerns they are not doing enough to tackle forced labor. It is the second time Donald Trump's administration has announced new import taxes since the US Supreme Court struck down many of his previous duties in February. The 60 trading partners listed, including the UK, the EU, Canada, and Japan, account for almost all of the goods sold to the US. The US Trade Department said these countries will face the tariffs because of their failure to address the importing of goods made with forced labor. Critics say Trump's tariffs policy has caused price rises in the US and elsewhere. At least 7 people have been killed after a drone hit a bus in the Russian-controlled Donetsk region of Ukraine as both sides escalate attacks. The Russian-installed head of the region, Denis Pushilin, said on the Telegram messaging platform on Wednesday that the bus was traveling between Moscow and Simferopol in Crimea. A further 11 people sustained injuries of varying severity, and all are receiving the necessary medical care, he added. Russia's state news agency TASS reported that the investigative committee has opened a criminal investigation under the category of terrorist attack, according to its spokesperson. Home Secretary Shabana Mahmood condemns unacceptable violence against officers at protests over the police handling of Henry Nowak's murder in Southampton. There can be no justification for hijacking this tragedy, to stir up violence and disorder, she says, after protesters and riot police were seen clashing near the home of Nowak's killer. Two people have been arrested over the unrest, the policing minister tells BBC Breakfast, who urges people to not allow this tragic case to lead to more hate and division. Too many people face a cliff edge drop in income when they retire, with more than three quarters not on course to save enough for a moderate lifestyle, a pensions trade body has warned. A new report by Pensions UK suggested what it termed a moderate lifestyle cost £32,700 for one person and £45,400 for two, but estimated just 23% of the working population were on course to reach such a level. Rising bills have pushed up the cost of retirement, it said, adding to calls for action to boost retirement savings. A Royal Navy helicopter has crashed into a field in an incident police have described as ongoing. Devon and Cornwall police said emergency services were at the scene in Sowerton Down in Devon. Military helicopters often train in the area around North Dartmoor, and the Ministry of Defence confirmed it belonged to the Royal Navy. Roads in the area were closed at 4:30, and National Highways said the closure of the A386 between A30 in Sowerton Down and Fowley Cross in Okehampton is expected to be in place until 12:15. Liverpool have reached a verbal agreement with Andoni Iraola to take over as head coach following the sacking of Arne Slot. Iraola left Bournemouth at the end of the season and is the clear favourite for the role at Anfield. According to a report in The Athletic, Iraola is set to sign a two-year deal. A formal announcement confirming Iraola's appointment is expected this week. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। अमरीकी सदर ने कहा है कि उन्होंने ईरान से कहा है कि अब वक्त आ गया है किसी न किसी तरह मुआहदा कर ले। कवैत ने अपने बयान में कहा है कि फिजाई दिफाई निज़ाम ने रात के दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमले रोके। रशिया ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन्स और दर्जनों मिसाइलों की बारिश कर दी। कम से कम 18 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की है। अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेंट्स को मुलाजमतों, हाउसिंग और हेल्थ केयर सहूलियात से दूर रखने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया और यूएई की स्टेट अबू जहबी में घर और कमर्शियल मकामात के किरायों में इजाफे पर पाबंदी आयद कर दी। और अब इन खबरों की तफसील। कवैत के वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा है कि फिजाई दिफाई निज़ाम ने रात के दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमले रोके। मिसाइलों और ड्रोन को कामयाबी से फिजा में तबाह किया गया। सुने के जोरदार धमाके दिफाई निज़ाम की कार्रवाई का नतीजा हैं। दूसरी जानब कवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि ईरानी ड्रोन मिसाइल हमलों के बाद कवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ईरानी हमले में एयरपोर्ट पर कई तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि जख्मियों की भी इतलात हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात की स्टेट अबू जहबी में घर और कमर्शियल मकामात के किराए मुजमद कर दिए गए। गल्फ कंट्रीज के मुताबिक हुकाम ने कहा है कि घर और कमर्शियल मकामात के किरायों में इजाफे पर आर्जी पाबंदी है। किराए के लिए नए और तजदीद शुदा मुआहदों पर भी इजाफा नहीं होगा। मौजूदा किराए से जायद रकम वसूल करने की इजाज़त नहीं है। यूएई के हुक्काम के मुताबिक ये फैसला फौरी तौर पर नाफिज है और घर और कमर्शियल मकामात के किरायों में इजाफा ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगा। अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेंट्स को मुलाजमतों, हाउसिंग और हेल्थ केयर सहूलियात से दूर करने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। बोस्टन एयरपोर्ट पर 3 अशरों से काम करने वाले सोशल सिक्योरिटी नंबर के हामिल कई मुलाजमीन फारग कर दिए गए। इमिग्रेंट्स की जगह अमरीकी शहरियों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और बाज दिगर को रसाई दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी पनाह लेने वाले अफराद पर काम का परमिट लेने पर इस साल से पाबंदी लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान से कहा है कि अब वक्त आ गया है किसी न किसी तरह मुआहदा कर ले। ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि 47 साल से ईरान जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त نہیں دی جا سکتی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت روکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو مسلسل جاری ہے، یہ بات چیت کی سمجھ جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ رشیا نے یوکرین پر میزائلوں اور ڈرون سے شدید حملے کیے، جس کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ رات بھر ہونے والے حملوں میں رشیا نے 73 میزائل اور 600 سے زائد ڈرونز داغے۔ حکام کے مطابق حملے کے باعث عارضی طور پر 140,000 افراد بھی بجلی سے محروم ہو گئے۔ پاکستان نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان پر اسرائیل کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں، لبنان میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو قابل مذمت ہے۔ رشیا نے یوکرین پر میزائلوں اور ڈرون سے شدید حملے کیے، جس کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ رات بھر ہونے والے حملوں میں رشیا نے 73 میزائل اور 600 سے زائد ڈرونز داغے۔ حکام کے مطابق حملے کے باعث عارضی طور پر 140,000 افراد بھی بجلی سے محروم ہو گئے۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
4: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
5: Coming up next, news and art culture show. This is Inspire FM.
6: Assalamu alaikum, my name is Issa Toy Mia. I'm from Islamic Help and I just want to say every act of goodness is charity. So keep doing good, keep helping people and be yourself and stay tuned to Inspire 105.1 FM.

0: Azad.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582 481 810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
3: Last time on Akhri Mojza.
4: Toka kaha hota na iya ka nabudu wa nastain. To sirf ek hi tarah ke mamle mein hum Allah Taala ki madad mangte hain. Kis tarah ke mamlaat mein? Ibadat se mutalliq mamlaat mein. सेहत से मुतालिक मामलात में नहीं, फैमिली से मुतालिक मामलात में नहीं, पैसों से मुतालिक मामलात में नहीं, अपनी डिप्रेशन के मामलात में नहीं, अपनी एंजाइटी के मामलात में नहीं, लेकिन अब एक जोड़ भी बन गया और एक अलहदगी भी हो गई, यानी दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और उन दोनों की गुंजाइश अल्लाह ताला ने हमें दे दी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।

اهدنا الصراط المستقيم. इसको समझने के लिए इसका मैं सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आपको ब्रेक दूंगा. इसको समझने के लिए एक मिसाल समझ लें. मैंने कल आपको एक अजीब सी मिसाल दी थी. फ़र्ज करें कि आप मेरे पास आके कहें आज के बाद नुमान तुम मेरे गुलाम हो. मैं कहूँ चलो ठीक है, सही है. अब फ़र्ज़ करें आपने कहा मैं गुलाम हूँ, मैंने कबूल कर लिया, और फिर मैं बैठा हूँ आपके साथ सोफे पे आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, आपने कुछ कहा ही नहीं. फिर मैं कहूँ अच्छा गुलाम तो मैं हूँ, कुछ करवाना है? अगर मेरा जो मालिक है वो कुछ कहेगा नहीं कि जाओ घास काटो, घर साफ करो, खाना पकाओ, जब तक वो कुछ कहेगा नहीं तो वो मालिक कैसा हुआ? क्योंकि अगर मालिक कुछ कहे नहीं तो मैंने क्या करना है? अपनी मर्जी, उसके कहे बगैर उसके मालिक होने का, उसके रब होने का नाता पूरा हो ही नहीं सकता. क्योंकि एक रिश्ता है ना, मालिक और रब और अब्द. रब जब तक हिदायत नहीं देगा, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, अहकाम नहीं देगा, कहेगा ये करो ये ना करो, ये इस वक्त करो ये ऐसे करो, इस चीज़ को सुनो, इस चीज़ पे गौर करो, जब तक वो ये नहीं देगा तो फिर रब सिर्फ कहने का हो गया. मैंने मान तो लिया कि वो रब है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा. ये भी होता है, मैंने ये चीज़ वहाँ US में तो बहुत कम देखी, मुसलमान कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखी. हमारे यहाँ टाइटल्स बहुत मिलते हैं जिनसे कुछ होता नहीं है. तो मुझे फलाने प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया या एडवाइज़र बना दिया, या एक मैं बेना के साथ एक यूनिवर्सिटी थी, मुल्क का नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमारी यूनिवर्सिटी का बेना इंस्टीट्यूट के साथ बहुत तआवुन है. 10 साल पहले की बात है, कुछ भी नहीं किया हमने, लेकिन एक सर्टिफिकेट है, वो तआवुन है. यानी कहने को तो एक रिश्ता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ है कि नहीं? नथिंग, कहने की बात है बस. और लेकिन वो जो हाथ शेक करते हुए फोटो लेना बहुत ज़रूरी है. वाह, बड़े मज़े के हैंड शेक्स होते हैं यहाँ. आप सिर्फ हाथ नहीं मिलाते हैं, कहते हैं फिर पकड़ते हैं फिर ऐसे देखते हैं, क्योंकि उसका असल मकसद हाथ मिलाना नहीं होता, हाथ मिलाने का रिकॉर्ड होना होता है जिसको फ्रेम करना होता है. अल्लाह ताला ने अगर अपने आप को रब कहा है, रब कहा है, तो रब होने का तकाजा यह है कि वो अपने बंदे को बताए मेरा बंदा होने के नाते तुम क्या करोगे. अगर वो बताएगा नहीं तो रब किस बात का हुआ फिर वो? तो क्योंकि हमने अभी खुद ही कहा ना कि हम अब बनने को तैयार हैं, इया का नाबुदो, हम आपकी मदद मांग रहे हैं, तो हमने पहली मदद क्या मांगी? ए दिना, हमें हिदायत दें, हमें बताएं हम क्या करें. अच्छा अब तो हो गए लेकिन हमें पता नहीं करना क्या है, कैसे करना है. और इस एहतिना में दो पहलू आ गए, दोनों इया का नाबुदु से भी मुतालिक है, इया का नस्ताइन से भी मुतालिक है एहतिना. यानी हमें हिदायत दें कि आपकी मदद कैसे आएगी दूसरे दर्जे में, और पहली बात हमें हिदायत दें हम इबादत कैसे करें, आपको खुश कैसे करें. पुराने मजाहिब में पता क्या होता था, जो बिगड़ी हुई शक्ल है इस्लाम की, इस्लाम जब अंबिया लेकर आए और फिर आने वाली नस्लें उसको भूल गईं, खुदा को अगर खुश करना है ना तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वो ऐसे ही नहीं खुश हो जाता. कोई ना कोई बकरी ज़बह करके उसका खून डालना पड़ेगा, कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, कोई ख़ास खाना बना के उसके सामने रखना पड़ेगा. आप देखेंगे मंदिरों में और जगहों पर क्या होता है, आप वो खाना लेकर आते हैं और वो सामने पेश करते हैं, ये जी मैंने आपके लिए चॉकलेट केक बनाया है, ये मैंने रखा हुआ है, अब बस आप मेरी ये मन्नत पूरी कर दें. जब तक उस खुदा को कुछ दोगे नहीं वो आपको कुछ नहीं देगा. और ये तमाम मज़ाहिब में, यहाँ तक कि कुछ मज़ाहिब में तो इतना एक्सट्रीम था कि जंग होने वाली है और हम जीत नहीं सकते जब तक फलानी जो देवी है उसकी मदद नहीं आएगी, उस देवी को खून की एक कुर्बानी चाहिए, तो हमारी जो सबसे यंग लड़की है उसको कुर्बान करके पहाड़ी से फेंक दो फिर उस देवी की मदद आएगी. अपनी बच्चियों को वो ज़बह करते थे उस खुदा की मदद लेने के लिए. क्यों? क्योंकि उनका खुदा के साथ रिश्ता और खुदाओं के साथ और देवियों और देवताओं के साथ जो रिश्ता था ना वो था एक तिजारती रिश्ता.
ट्रांजैक्शनल, हम कुछ देंगे फिर वो कुछ हमें देगा। फातिहा में शुरू से ही अल्लाह ताला ने हमसे कुछ मांगा, पहले अपनी नेमतें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कुछ किया कि उसने किया है? उसने हम की मुस्तहिक चीज़ें की हैं खुद। फिर उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम, हमने कुछ किया है भी कि वही कर रहा है, वही कर रहा है। यानी शुरू से ही हमारे किए बगैर हमें दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब हमें कुछ शर्म आई, हमने कहा मेरे रब हम क्या करें, आपने इतना कुछ कर दिया, अब हमसे भी तो कुछ करवा लें, हमारे नाम क्या खिदमत है? और वो क्या है? एहदिना, एहदिना, हमें कुछ तो कह दें। आप मुझे ये बताएं, हम जितना भी कर दें, अल्लाह ताला जो हमारे लिए करते हैं उसका मुकाबला किया जा सकता है ना? तो ये एहदिना में भी जो अल्लाह ताला हम से जो हम हिदायत मांग रहे हैं ना, वो असल में अल्लाह ताला को पहचानने के बाद कम अज़ कम हमारे रब हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हम आपका कभी हक तो अदा कर नहीं सकते, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ है जो हम अगर पूरी कर दें तो आप हमसे राज़ी हो जाएं, आप हमारी इबादत कबूल कर लें, तो वो बता दें वो क्या होगी। यह है एहतिना। और फिर एहतिना के अंदर अगर कहा होता मुझे हिदायत दे दें, एहतिनी एहतिनी अस्सिरातुल मुस्तकीम, लेकिन हमने एहतिनी नहीं कहा, क्या कहा है? एहदिना। अच्छा, शुरू में जब हम्द की थी ना, जब मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ दिल से, तो मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा होता। किसके बारे में सोच रहा होता हूँ? अपने बारे में। जब मैं अल्लाह के बारे में कहता हूँ अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह की जो मोहब्बत है उसका मेरे लिए ख्याल है, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ? अपने बारे में, इनफरादी बात है। मालिक यौमिद्दीन, मुझे आपकी फ़िक्र होती है, अपनी फ़िक्र होती है, अपनी फ़िक्र होती है। अभी तक जो सारी बात हो रही थी वो फ़र्द की थी, मेरी थी। तो यहाँ तक जो बात पहुँची तो मुझे कहना क्या चाहिए था, तवक्को क्या थी? मुझे हिदायत दें। अभी तो बात, हर बात का इशारा मेरी तरफ वापस जा रहा है, मैं रब, मैं अब्द हूँ। लेकिन इबादत की और हिदायत की जो तलब हमने की है वो इकट्ठे की है। इसमें भी एक बात की तरफ इशारा है कि ये हिदायत अकेला इंसान नहीं कर सकता, अकेले इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए। हमें इकट्ठे हिदायत दें। और इसमें एक ख़ुद गर्जी से भी निकाल दिया हमें, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, बाकी भाड़ में जाए, बस मैं और तू। नहीं नहीं नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की फ़िक्र करना भी सिखाई। अगर मेरे रब में इतनी रहमत है, इतनी मोहब्बत है, इतना ख्याल है, और उसने मुझे बनाया है, तो मेरे अंदर भी उसकी कुछ झलक तो आएगी ना, कि मुझे भी किसी और का ख्याल है, मुझे किसी और से भी मोहब्बत है। और जो चीज़ मैं अपने लिए इतनी बुरी तरह चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता, मैं सबके लिए

0: देने की कोशिश करते हैं।
1: जब आप
0: ये लोग तो जहन्नमी है, जहन्नमी। इनको देखो, काफिर हैं ये, काफिर। ये फलाने ऐसे हैं, ये फलाने मुशरिक हैं, ये फलाने उधर। जिस जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये इहतना की रूह से सही है कि नहीं?
1: अगर वाकई इतना समझे हो और कोई बहुत ही गलत रास्ते पर है, बहुत ही गलत रास्ते पर है, इस फातिहा के पढ़ने में आपने उसके खिलाफ दुआ की है कि उसके लिए दुआ की है? उसके लिए दुआ की है, उसके लिए। और जिस जिस जज्बे से अपने लिए दुआ की है, उसी जज्बे से उसके लिए दुआ की है। ये नहीं कहा अल्लाह मुझे मुझे हिदायत दे और उनको भी दे दे फिर भी। हाँ चले, उनको भी थोड़ी बहुत। एक दिन हम सबको इकट्ठे, एक जैसे, जो मैं अपने लिए चाह रहा हूं और जिस तरीके से अपने लिए चाह रहा हूं, उसी तरीके से किसी और के लिए भी चाह रहा हूं। हमारा आजकल, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और ऐसा दौर इंसानियत पे गुजर रहा है कि हम एक दूसरे के अफकार को, एक दूसरे की बातों को अब दुनिया के हर कोने में इस तरह सुन सकते हैं जैसे पहले कभी नहीं सुन सकते थे। इसी तरह इस्लाम और इस्लाम से मुतालिक जो बातचीत हो रही है वो अब जिस लेवल पर हो रही है और जितनी ज़्यादा हो रही है पहले कभी नहीं हो सकती थी, राइट? हर तरह के लोग हर तरह की बात इस्लाम के बारे में भी कर रहे हैं, आपको मालूम है। लेकिन एक जायज़ा मेरा क्या है कि अक्सरियत बात जो इस्लाम के बारे में हम करते हैं ना, वो हम किसी और की तनकीद करते हैं। अक्सरियत ये गलत इसलिए है, फलाना गलत इसलिए है, इसकी बात इसलिए नहीं सुनो, इसको इस तरह गलत साबित करूंगा, इसकी इस तरह धज्जियाँ उड़ाऊंगा। और फिर वो जवाब में क्या कहता है, अच्छा मैं गलत हूं, मेरी वीडियो देखना कि तुम कितने गलत हो। और एक दूसरे की गलतियां, और ये दोनों फिर गलत वीडियो, एक दूसरे की गलतियां वीडियो रिलीज करने के बाद फिर नमाज का टाइम होता है और दोनों इकट्ठे खड़े होकर कहते हैं अपने अपने घरों में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हयात का मजाक नहीं बना लिया हमने? और ये कोई बहुत गहरी तालीम है जो बहुत बहुत कुरान पढ़ने के बाद कई सालों बाद जाके समझ में आएगी, तो पहले सफ़े पर है यार। ये तो जब आपने इस्लाम कबूल किया था तब से आपके जहन में ये बात आनी चाहिए थी कि मुझे बाकी इंसानियत की फिक्र है, मुझे उनको गलत साबित नहीं करना, मुझे उनके लिए भलाई चाहिए। और जो रहमत मुझे अल्लाह दे रहा है उसी रहमत का तकाजा है कि मैं लोगों के साथ भी रहम से, मोहब्बत से, इखलास से, खलूस से बात करूँ। और अगर मेरा वाकई किसी के साथ इख्तिलाफ है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी गुमराही में पड़ गया है, मुझे फिक्र है, क्या करूं? वीडियो बनाऊं उसके बारे में? अगर आपको किसी की फिक्र हो, अपने कजन की फिक्र हो कि वो किसी गलत रास्ते पे चढ़ गया है, तो आप उसकी वीडियो बनाओगे कजन की? मेरा कजन जो है वो, मुझे लग रहा था कि वो शराब पीना शुरू कर दी उसने, तो मुझे उसकी बहुत फिक्र है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है कि वो हिदायत के रास्ते पर आ जाएगा। अपलोड। या आपने उसके साथ मोहब्बत की है या उसके साथ नफरत की है? ये नफरत नहीं है। अगर वाकई उसकी फिक्र है तो क्या करते? उसके घर जाते, उसे गले लगाते, उसे साथ बिठाते, उसे कहते मेरे भाई हो तुम, क्या कर रहे हो? नहीं करो ऐसे। कब शुरू हुआ ये? आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आओ मैं तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर लेकर जाता हूँ, किसी से बात नहीं करूँगा, ये तुम्हारे मेरे दरमियान है। और ये किस चीज़ का तकाजा है? मोहब्बत का। एक तरफ तो खुतबा हो रहा है, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, और दूसरी तरफ अपने भाई के ऊपर वीडियो बन रही है। भाई से बात कभी की है? नहीं नहीं नहीं और फिर दूसरी बात, बात भी करोगे ना? और कोई कहे कि नहीं मैं उससे खुद बात करूंगा, और लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं आप उससे खुद ही बात करें। हाँ मैं करूंगा बात उससे, वो बात करो, वो बात को रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो बना के करो। दिस इज एहदिना नाउ, ये नया एहदिना है। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन एहदिना। अगर मैं तो कहता हूं अगर मुसलमान फातिहा पे गौर कर लेना तो उम्मत की शक्ल बदल जाए, हमारा पूरा डिस्कोर्स बदल जाए। किस किस्म का हम मवाद तैयार करते हैं, कैसे हम बात करते हैं, हमारा उसलूब क्या होता है, हमारा एटीट्यूड क्या, सारा का सारा बदल जाए। اور ابھی ہم اس آیت میں داخل نہیں ہوئے، صرف اس کا میں تعلق دکھانا چاہ رہا تھا پچھلی باتوں سے۔

0: और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि हमने अल्लाह से दावा किया ना कि हम इबादत करने को तैयार हैं और हम मदद चाह रहे हैं, तो कैसी मदद हो और कैसी इबादत करनी हो उसके लिए अल्लाह ताला हम सबको इकट्ठे अपनी हिदायत दें। ओके, दो सवाल थे, इसमें से एक मुझे याद आ रहा है इबादत के बारे में, इबादत के कॉन्सेप्ट के बारे में, इय्याका नअबुदु। क्योंकि इस आप सबको इल्म होगा कि जो हिदायत हमने मांगी है इस सूरत में उसका जवाब बाकी कुरान है, यानी उसके जवाब में कुरान ने हमें ये पूरी किताब दी है। तो इसका मतलब ये होगा कि इबादत, इसकी तमाम तालीमात को इबादत ही समझा जाएगा, और इसकी तालीमात में नमाज शामिल है, इसमें कोई शक नहीं, ज़कात शामिल है, इसमें कोई शक नहीं, रोज़ा शामिल है, हज शामिल है, लेकिन इसकी तालीमात में तदब्बुर भी शामिल है, इसकी तालीमात में सोचना भी शामिल है, सीखना भी शामिल है, इसकी तालीमात में गौर करना, तारीख़ के बारे में सीखना, इसकी तालीमात में जज्बात को समझना, मुख्तलिफ़ जज्बात को समझना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुश्किल से गुज़रे उस पर गौर करना, यानी इबादत का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत वाज़े होती हैं जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह, लेकिन इस कुरान ने उस कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा बना दिया। लोग आम तौर पे कहते हैं आपको कुरान हमेशा अमल में लाना चाहिए, एक एक आयत को आप अमल में लाएं। मेरा सवाल ये, आप अलिफ लाम मीम को अमल में कैसे लाएंगे? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही अमल में कैसे लाएंगे? अमल में लाने की वो आयात हैं जिनमें अमल का मुतालबा है, और आयात में तदब्बुर का मुतालबा है, सोचने का मुतालबा है, दिल के लरजने का मुतालबा है, मुख्तलिफ किस्म के मुतालबे हैं। हर मुतालबा अमल नहीं है, अमल तो एक पहलू है इबादत का, लेकिन इबादत के और बहुत सारे पहलू भी हैं, और क्योंकि बाकी मज़ाहब में उन सबको अलग अलग कर दिया गया, फ़लसफ़ी और हो गए और इबादत करने वाले और हो गए और अहकाम पे जोर करने वाले और हो गए और जो है रूहानियत को समझने वाले और हो गए, उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट खोल लिए। कुरान ने क्या किया, उन तमाम चीज़ों को हमेशा इकट्ठा रखा और एक को दूसरे से अलग नहीं होने दिया, और यही असल इबादत है, असल इबादत ये है। और ये कॉन्सेप्ट इबादत का कमज़ोर होता चला जाता है जब हम अल्लाह ताला के कलाम से दूर होते चले जाते हैं। जितना आप उस पर गौर करोगे आपका कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं होगा, जितना उससे दूर होते चले जाओगे इबादत के कॉन्सेप्ट में कमज़ोरी और कमी आती चली जाएगी, यहाँ तक कि इस मकाम तक पहुँच जाएंगे कि हम कहेंगे, किसी के बारे में कहेंगे इबादत कर रहा है इसका मतलब ये नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो कमाई कर रहा है अपनी फैमिली के लिए तो ये नहीं कहेंगे इबादत कर रहा है। राइट, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों की तैयारी कर रहे थे वो इबादत कर रहे थे, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि ये इबादत है। जो तिजारत कर रहा है और उसके ज़रिए से हलाल रोज़ी कमा रहा है वो भी क्या कर रहा है? इबादत कर रहा है, वो इबादत कर रहा है। तो इसका एक जो जामे तसव्वुर है ना उसको अपने सामने रखने की बहुत ज़रूरत है। खैर, तो ये एक बात थी। दूसरी बात थी मुजारे के बारे में कि इय्याका नअबुदु में ये नहीं कहा इय्याका अबदना व इय्याका इस्तअन्ना, हमने आपकी इबादत की, हमने आपकी मदद मांगी, यानी माजी में कहा जा सकता था, लेकिन मुजारे इस्तेमाल किया है। मुजारे अरबी में मुदारे जो है ना ये हाल और मुस्तकबिल दोनों को शामिल करता है, तो मैंने तर्जुमा एक तरह किया था लेकिन असल में तर्जुमा दोनों तरह है। हम आपकी इबादत कर रहे हैं और करेंगे, हम आपकी मदद मांग रहे हैं और मांगेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं मांगते रहेंगे, इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं, वो भी सही होगा, मांगते रहेंगे। तो हमने एक कमिटमेंट की है अभी की और फ्यूचर की, मुस्तकबिल की, इन अल्फाज के ज़रिए से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ओके, दूसरा एक सवाल आया था अल आलमीन के बारे में पहले कि अल आलमीन में तफसीर में अक्सर व बेशतर यही कहा जा रहा है कि अल आलमीन में नबातात, जमादात, परिंदे, जानवर, जिन्नात, तमाम आलम, तमाम दुनियाएँ, तमाम जहानों का मालिक ना, तो उसकी तरफ इशारा है। मैं उस बात का इनकार नहीं करता, मैं कहता हूँ कि قرآن کے الفاظ، جہاں تک میں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، تو قرآن کے الفاظ میں دو طرح کے مفاہیم ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے المعانی الاوائل اور دوسرے المعانی الثوانی. انگلش میں سمجھنے پرائمری میننگز، سیکنڈری میننگز، پہلے درجے کے معنی، دوسرے درجے کے معنی. اور یہ قرآن میں بہت جگہ ہوتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا غلط ہوتا ہے. میں ڈاکٹر فاضل صالح حسام رائی کے کام سے بہت متاثر بھی ہوں. انہوں نے قرآن کی بلاغت پہ بہت کام کیا ہے، عربی میں ہی کام کیا ہے. عراقی ہیں وہ، سامرا سے، ابھی بھی بغداد میں ہوتے ہیں. انہوں نے العالمین کی جو شرح کی تھی اس کے سٹرکچر کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی. اور میرے نزدیک یہ بات نہ صرف کانٹیکسٹ کے اعتبار سے سینس رکھتی ہے، اور اس کو پرائمری رکھنا چاہیے اس صورت میں. جو اوائل معنی ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اوائل معنی کون سے ہیں. انکار نہیں کیا جا رہا ایک کا یا دوسرے کا، لیکن پہلے درجے کے معنی کس کے ہیں، نمبر ون پہ کس کو رکھنا ہے، نمبر ٹو پہ کس کو رکھنا ہے. میرے نزدیک نمبر ون پہ ذوی العقول، اینا سے ذوی العقول نکلتے ہیں، یعنی فرشتے، جن، انسان، روحیں، یہ تمام العالمین میں شامل ہوں گی، اس دنیا میں یا آخری میں، اگلی دنیا میں. لیکن کیونکہ اس سورت کا اصل مقصد انسانیت سے خطاب ہے، اور اس کا اصل مقصد ہدایت ہے ہمارے لیے، اس لیے پہلی پریفرنس میننگ کی اس معنی کو دینی چاہیے جو اس کے ساتھ فٹ کرتی ہے. تو سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے معنی کو پہلے درجے پہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، خیر.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کس کی کتنی ضرورت ہے. آپ کے بچے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے. جس طریقے سے مانگ رہا ہے، مانگنے دینے کا دل نہیں جاتا. پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ پوچھا کا تمیز سے پوچھا جاتا ہے، ادب سے پوچھا جاتا ہے. اور پھر آپ نماز پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، ایک دن سناتا ہوں اس کا تھیم.